कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे, तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा, तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया और अल्लाह भी बेनियाज हो गया, और अल्लाह बेनियाज है लायक हमद व सना है। जो लोग काफिर हैं उनका एतिकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है।
1: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ फॉरवर्ड कॉलेज डॉट पी के वधीक ॼाण लाइ 0304-28-27274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर व्हाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर व्हाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर व्हाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर व्हाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर white

0: 96 851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए।

0: मसला मदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
0: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे मुझी एड्रेस बुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8743।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: रोड के किनारे ते सवारी के इंतजार में बैठल हुआ त एक कार खेन टक्कर हो टिनी फोती नौजवान जा लाश घर पुछ कोराम मची मलेर में नौकरी फार्म हाउस से घुरायल उनठ छोकर जा मोबाइल फोन खड़ी फरार थन वारो वाके में मुलवस एक औरत समेत ब जवाबदार गडा पुलिस फार्म हाउस नरगिस के गिरफ्तार करे वरतो वट मोबाइल फोन खणी फरार थल साहिल सलमान अन्या ताई गिरफ्तार न थी सकियो पुलिस छापन जो सिलसिलो सऊदी अरब जे सिक्योरिटी के हेठां ॾेखारण जी कोशिश जो सख़्त जवाब ॾियण खां वारो रस्तो अख़्तियार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सौरियासल जे सालियाने जे ख़िताब कंदे चयो त रियाज़ इलाइक़े छिकताण घटाइण जे सिफारती हल में पंहिंजो सहकार जारी रखंदो आलमी सतह ते तस्लीम थियल यमनी हुकूमत जी समूरे मुल्क ते अथॉरिटी क़ाइम करण लाइ मदद पिण फराहम कंदासीं मक़ादिफ़ाई इतिहाद ख़िते जे सिक्योरिटी ऐं इस्तक़ाम घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी अतातार तलाल चौधरी ऐं ॿियनि जी शिरकत मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म खे अमुन अमान जी सूरताल ते ब्रीफ कयो ज़रियनि मूजिबि के पी जे सूरताल ऐं गवर्नर राज समेत एमरजेंसी वारे मामले ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई वज़ीर आज़म सां स्पीकर अयाज़ सादिक़ जी बि धार मुलाक़ात अहम कानूनी आइनी मामलनि ते गौर वीचार कयो वियो स्पीकर अयाज़ सादिक़ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खे अपोज़िशन सां परदे पुठियां हलंदड़ ॻाल्हियुनि राब्तनि ऐं पी पी वफ़द सां थियल मुलाक़ात बाबति बि आगाह कयो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदर आसिफ अली ज़रदारी सां बि मुलाक़ात करण जो इम्कान मुल्की सियासी सूरताल ख़ासि तौर ते के पी में अमुन अमान वारी सूरताल ते गौर कयो वेंदो कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तार चयो आहे त गवर्नर राज जी एमरजेंसी ते ॿ ॾींहं पहिरियां जेको मौक़ुफ़ु हो अॼु बि उहो ई आहे हालतूं हुन तरफ़ वञनि ऐं आइनी घुर्जूं पूरियूं हुजनि त उहो कानूनी अमल आहे हुकूमत पीटीआई बानी जी आज़ादी जो फ़ैसिलो नथी करे सघे वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो चवणु आहे त एमरजेंसी पसंदीदा अमल न आहे गैर आइनी क़दम न खणण जी ख़ातिरी कराई वञे

सचल कानूनी लाड़ करो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई, आचार ते सुबह जो 12 बजे का शाम जो 4 बजे ताई। राबते जिलाए मुस्लिम अब्बासी, मोबाइल नंबर 03342241।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: que sponsor Jimmy Rogers de Indonésia agora chegam a cheirar o Vale em Orpim. Especially sponsored by Super White. Ab Super White hai kya? Wo aapko pata chalega. Aur Super White, jiske hone se aapki aur meri chit-chat jo hai daily basis pe hua karegi ab se, yani ke 11 se leke 1 baje tak daily, theek hai. अब सुपर वाइट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं. सुपर वाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके लिए बना रही है बहुत ही अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं वो इस प्रोग्राम में आपको पता चलेगा आज से लेके तब तक जब तक हम आपको बताना चाहते हैं. ठीक है जी. तो आज का जो प्रोग्राम है यानी कि आज से जो प्रोग्राम है वो होगा जी सुपर वाइट की जानिब से. और सुपर वाइट जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब इनकी प्रोडक्ट्स की इतनी कोई तवील लिस्ट है ना जो कि मैं स्टार्ट करूंगी तो आप सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा. और जब आपको अच्छा लगेगा तो मुझे ये बात अच्छी लगेगी कि आपको अच्छा लग रहा है. ठीक है जी. तो सुपर वाइट जो कि बहुत ही खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपकी खूबसूरती को बढ़ा देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड तमाम मसले मसाइल को हल कर दे. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे लगें, आप भी अट्रैक्टिव लगें और कोई मसला पेश आ गया है, लाइक आजकल स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मसले जिसमें से एक आम मसला जो कि एक्ने का होता है, या उससे ज्यादा एक और आम मसले की बात करें तो वो है डाउन कॉम्प्लेक्शन. बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते और अपने ही कॉम्प्लेक्शन से कभी कभार सेटिस्फाइड नहीं होते और वो चाहते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन जो इस वक्त है उससे कई मजीद और बेहतर हो जाए और चिट्टा गोरा हो जाए. चिट्टे गोरे रंग पे सब मरे चले जाते हैं. तो अगर आप भी वही वाले हैं तो बिल्कुल आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो डाउन कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर होगा. और डाउन कॉम्प्लेक्शन फेयर होने के साथ साथ और भी स्किन से जितने भी मसले मसाले हैं वो सारे खत्म होंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट से. ठीक है. सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत सारे हैं, जिनमें अगर मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में नहीं, अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताते हैं और डिटेल्स में जाएंगे. पूरा प्रोग्राम पड़ा है डिटेल्स में जाने को. तो अगर मैं बात करती हूँ सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स, तो सुपर वाइट वाले बनाते हैं जी वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को बनाती है खूबसूरत. और ये किस काम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी. और सेम सुपर वाइट वाइटामिन सी फेस वॉश और इसके साथ साथ सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है वो है जी सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश. यानी कि जो क्रीम है उसका फेस वॉश भी है भाई उसी फॉर्मूले में, उसी फ्लेवर में. तो क्या बात है. अच्छा, इसके अलावा जी सुपर वाइट एंटी डलनेस फेस वॉश. चलिए जी, आपने कभी सुना है कि डलनेस के लिए कोई प्रोडक्ट स्पेशली बनाई गई हो? और नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से. तो आप सुन लें. और सुपर वाइट वाले एंटी डलनेस फेस वॉश ही बनाते हैं और इनकी ये प्रोडक्ट है जी. और इसके अलावा सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी सूप और सुपर वाइट राइस कोलेजन क्रीम भी बनाते हैं. अब ये सारे प्रोडक्ट्स किस काम आते हैं वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी. इसके अलावा जी सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी आती है. तमाम तो लोग जिनकी स्किन ऑयल वाली है, यानी कि ऑयली है और स्किन टाइप उनकी ऑयली है, तो वो यूज कर सकते हैं सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम और साथ में उसका सोप भी आता है. इसके अलावा जी सुपर वाइट फेस वॉश ऑयल कंट्रोल ये भी आपको मिल जाता है. इसके अलावा सबसे अच्छी अच्छी जो चीज है वो है जी सुपर वाइट ब्यूटी सीरम. सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जो कि ब्यूटी सीरम है और बूस्टर भी है जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करता है. ठीक है जी. तो ये कुछ इंट्रोडक्शन सुपर वाइट का और सुपर वाइट के साथ ही हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम प्रोग्राम का पहला गाना प्ले करेंगे. आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो आगे चल के हमने बहुत कुछ करना है. तो प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रहे हैं जी प्रोग्राम का पहला गाना. और प्रोग्राम का पहला गाना हम इंक्लूड करेंगे. सो अगर मैं बात करती हूँ अपनी, तो मैं आज ऑलमोस्ट पूरे मंथ बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज प्ले किया जाए. पिया घर आया और पिया घर आने में जो है ना वो बड़ी देर हो गई और गाना प्ले होने में भी थोड़ी सी देर हो गई.
1: क्योंकि जब आप कुछ अच्छा प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ जाती हैं जो YouTube की तरफ से है. हम इन रुकावटों को तोड़ ताड़ के हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं. तो गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको देखना निखरा चेहरा ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एच ब्यूटी ग्लोइंग फोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: डैमेज दुखिए तो खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रीस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चामरन जो खूबी जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए आई एम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटी वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सक
2: लेसरपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385569 खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385569
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटी क्लैम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।

welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स और अक्सा कॉस्मेटिक्स के सुपर वाइट प्रोडक्ट जो कि आपको दे रहे हैं वो खूबसूरती जो कि पहले कभी किसी और प्रोडक्ट ने ना दी होगी कभी भी. तो अगर आप भी अपनी स्किन को फ्रेश लुक और बेहतरीन लुक देना चाहते हैं तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं. अच्छा, ग्लो लाने के लिए बहुत सारे लोग आजकल जो है ग्लो लाना चाहते हैं अपनी स्किन पर, लेकिन ग्लो ला नहीं पाते हैं. अब वो क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे होते जिनसे कि एग्जैक्टली ग्लो आए. ठीक है जी, तो अब आपकी स्किन पर फाइनली ग्लो आएगा. और वो कैसे आएगा? सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम से. और सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम जो कि बहुत ज्यादा अच्छे अज्जा से तैयार करता है. इसमें तमाम तर मौजूदा इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को दे रहे हैं बहुत ही कमाल किस्म का ग्लो. और सुपर वाइट राइज कोलेजन फेस वॉश भी इसके साथ आता है. इसमें कोजिक एसिड भी मौजूद है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो

देती है. सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जिसमें कोजिक एसिड मौजूद है जी, और आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सूटेबल है. लेकिन तब ग्लो आएगा जब आप इसको बाय करेंगे और बाय करके यूज करेंगे, ठीक है जी. तो सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पे ग्लो आता है, और जितनी भी बेजान रूखी स्किन क्यों ना हो, सालों से आपके स्किन पे कोई ग्लो आया ना हो, तो बिल्कुल आएगा, और वो आएगा सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम से. इसमें कोलेजन की बहुत सारी खूबियां मौजूद है जी, और कोलेजन जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करता है जी, और कोलेजन एक ऐसी चीज है जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद भी है. तो अगर आप भी अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, और आपने भी सुन रखा है लोगों से अपने बारे में कि आपके चेहरे पे कोई 12-13 बजे रहते हैं, या बेरोनक सा चेहरा है या बेरोनक सी स्किन है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपकी स्किन भी ऐसी है, तो अब आप यूज करेंगे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम और उसके साथ उसका फेस वॉश भी, ठीक है जी. और इन सबको बूस्ट करने के लिए सुपर वाइट वाले अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि एक सीरम बनाते हैं, इस सीरम को आप इनकी किसी भी क्रीम में यूज कर सकते हैं एज अ बूस्टर, ठीक है जी. अगर आप क्रीम के रिजल्ट को मजीद और इनहेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें बूस्टर को ऐड करेंगे, ठीक है जी. बूस्टर या इसको सीरम कह लें, एक ही बात होती है वैसे. तो आप इसको ऐड करेंगे अपनी उस प्रोडक्ट में जो कि आप यूज करें सुपर वाइट वालों की, ठीक है जी. सुपर वाइट की कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने बूस्टर को ऐड करना है जी, और इसके ऐड करने के बाद आपके जो रिजल्ट है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे. और इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है, इसके अलावा खुश्क जल्द को नरम करता है, स्किन को जो है कुदरती हाइड्रेट करता है, झुर्रियों को खत्म करता है, और ये हर किस्म की जो स्किन टाइप है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है. चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तमाम स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सूटेबल है, ठीक है जी. तो इस बूस्टर को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने

0: ये है कमाल, और ये कमाल की बात आपको अगर पता चल चुकी है तो डेफिनेटली जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो भाई लोगों इस ऑडियो स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि काफी दिन बाद आई हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं आ गई हूँ, तो उन लोगों को बताओ, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने पेजेस पे ग्रुप्स में जहाँ जितना मर्जी शेयर करना चाहो उतना करो, लेकिन शेयर जरूर करो। अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। नंबर सही बताया है मैंने? मुझे लग रहा था कहीं मैं भूल ना गई हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आने से पहले यही सोच रही थी कि कहीं मैं कॉलिंग नंबर की जगह मैं कोई और नंबर ना बता दूं जो मुझे याद हो, या कोई गलत नंबर ना बता दूं। अच्छा, नंबर मैंने सही बता दिया है, तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो सेगमेंट है, सेगमेंट को हम कंटिन्यू भी करेंगे। सुर लगाओ गाना सुनाओ, ठीक है? सुर लगाओ गाना सुनाओ को हम कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारी कॉल्स लेंगे, बहुत सारी कॉल्स के साथ साथ हम आपसे पूछेंगे। आज तो मतलब पूछने को बहुत सारी बातें हैं, और वैसे भी हमारे पास ना बातों की कमी है ना गानों की कमी है, और बातें करते करते हमें याद आया है कि हमें चेक करना है जी एक अदद टाइम चेक। तो हम टाइम को चेक करेंगे, और टाइम को चेक करके आते हैं जी हम वापस। बहुत सारी कॉल्स के साथ साथ हम आपसे पूछेंगे। आज तो मतलब हमारे पास ना बातों की कमी है ना गानों की कमी है, और बातें करते करते हमें याद आया है कि हमें चेक करना है जी एक अदद टाइम चेक। तो हम टाइम को चेक करेंगे, और टाइम को चेक करके आते हैं जी हम वापस। 11:45 AM This time check is brought to you by है बाजी रुखसार। देखिए जी, मैंने बताया है नहीं, देखिए जी मैंने बताया है नहीं, और तारीफें मैं पहले से सुन रही हूँ, मतलब कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि जो कि पहले से ही इतनी मशहूर है। अच्छा, इसके अलावा कामरान अली का कमेंट आया है, थैंक यू कामरान, और इसको लेंगे, और फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल हम चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: बाजी रुखसार, हाफिज सावल गोरो से बात कर रहा हूँ।
0: हाफिज सावल भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बाजी?
0: ओके, जबरदस्त। और मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी।
0: प्रोग्राम में क्या तब्दीली आई है? अभी ज्वाइन किया है, चले मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन कोई अच्छे से गाना सुनाएंगे, लेकिन गाने की दो लाइन सुनानी है, ज्यादा नहीं।
1: जी, का है?
0: सुना दे
1: जी, तो पर्दे में दीदार नहीं, दीदार लाए चाहो दो, तुझे प्यार लाए चाहो दो।
0: वाह वाह वाह, कमाल कमाल। और कुछ कहेंगे?
1: अरे दो थे,
0: जल्दी से थैंक यू सो मच। और ये रहा गाना, गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा किस्मत।

0: परेशान आयो पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐं वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्श क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताजगी अॼु पंजे वेझे स्टोर तां आर्श क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्श क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 7:30 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
1: 44 सालनि जो तजुर्बो हज़ारें मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज़ जोड़नि जो सूर मैदे में जलन गैस बदहज़मी तेज़ाबियत गुर्दनि जी पथरी बवासीर बे औलादी वारनि जो किरण गंजपण फॉलेज ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराम करे रहिया आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 खां शाम 5 ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 0326-22-00-440
2: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 0300-93-12700
3: GFM 88 नेटवर्क

Aogi ji, welcome back once again. Aap sun rahe hain Zindagi Gulzar, sponsored by Super White. And Super White by Aksa Cosmetics aur Super White ke bahut sare products. Acha, aap iska inke products ka formula bhi bana sakte hain. Aur wo kaise bana sakte hain? Wo aise bana sakte hain ki main aapko batati hu ki aap log kaise bana sakte hain. Okay, जी आप कर ये सकते हैं कि सुपर वाइट के जो प्रोडक्ट हैं यानी कि सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है और सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेने के बाद ना आप लोगों ने इसमें ऐड करना है जी बूस्टर. और बूस्टर क्या है? सीरम है जी सुपर वाइट वालों का जो कि एक कमाल का सीरम है. अगर आपको एक्ने का इश्यू रहता है जी तो आप इसमें इनकी ऑयल फ्री एक्ने क्रीम भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जिन लोगों को एक्ने का इश्यू रहता है तो वो लोग ऐड करेंगे सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में. ठीक है, सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम ऐड करेंगे. ठीक है, एक्ने क्रीम जो है इनकी वो ट्यूब के अंदर आती है जी, और वो आप लोग इसमें ऐड करेंगे. और जो ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम है वो जार में आती है, बड़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग में आती है, वो ऐड करेंगे. और फिर ऐड कर देंगे लास्ट में सुपर वाइट वालों का सिरम. और सुपर वाइट ऑयल फ्री सिरम को ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स मिक्स मिक्स करेंगे. एंड मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर कर लेंगे जी जार के अंदर. और आप इसको डेली बेसिस पे रात के वक्त सोने से पहले अपने फेस को वॉश करेंगे. सबसे पहले सुपर वाइट ऑयल फ्री फेस वॉश से जो कि सुपर वाइट वालों का ही है. और उसको जो है आप लोग फेस को वॉश करने के बाद फिर आप लोग कर ये सकते हैं कि आप लोग ब्यूटी क्रीम को लगा सकते हैं. ब्यूटी क्रीम को लगाने के बाद आप लोग आराम से सो सकते हैं. सुबह उठने के बाद पहला काम सबसे पहले फिर से ये करेंगे कि सबसे पहले अपने फेस को वॉश करेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे. ठीक है, तो ये चीज करेंगे. और ये करने के बाद ना आपको पहले ही 3 दिन में वाजे फर्क जो है नजर आ जाएगा, दिख जाएगा. और जब वाजे फर्क नजर आ जाएगा, दिख जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि वाह क्या कमाल के प्रोडक्ट्स हैं सुपर वाइट वाले, अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि आप लोगों के लिए बनाते हैं. और सिर्फ आप लोग जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत हैं. और पहले ही 3 दिन में आपको वाजे फर्क नजर आना शुरू हो जाते हैं. यानी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डाउन है, फेयर नहीं है, तो डाउन कॉम्प्लेक्शन फेयर होना शुरू हो जाता है. अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने या फिर एक्ने के पुराने निशान है जो कि अभी तक नहीं गए हैं, और छोटी मोटी एक्ने या फिर थोड़ी बहुत एक्ने या फिर बहुत ज्यादा एक्ने, एक्ने का पूरा खानदान, तो वो सारा का सारा खानदान तबाह करने के लिए आप लोग लगाएंगे क्या सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम प्लस सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री सिरम, जिनको आपस में मिक्स करके आप लोग एक अच्छा सा फार्मूला तैयार कर सकते हैं अपने लिए. और बहुत सारे फार्मूलाज बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे यूज करके. अब आप लोग ये यूज करके देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि अपने मयार और क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और ये आपको पता लगेगा प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद. इसी बात पे हम लेंगे आप लोगों की एक अदद लाइव कॉल, और लाइव कॉल लेने के लिए आप लोग नंबर डायल करेंगे, यानी कि करने के लिए आप लोग नंबर डायल करेंगे. नंबर है 03000113488. सो नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल. हेलो हेलो, कोई है? ओके, कोई नहीं है, कॉल ड्रॉप करती है. वेरी बैड. हाले सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है जी फेसबुक के ऊपर. हाले सुल्तान क्या कहती हैं? हाले सुल्तान कहती हैं, हे स्वीट आरजी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वहीद वफाई हमें सुन रहे हैं, आप अच्छी हैं और आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह. ओके, थैंक यू सो मच. इसी बात पे एक कॉल. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? अलाडिनो खोसो. कैसे अलाडिनो खोसो? कॉल ड्रॉप हो चुकी है, एक और ले लें या फिर गाने की तरफ चलें?

जी गाने की तरफ मूव कर रहे हैं एंड सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और जब कोई आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अच्छा सा, पता नहीं क्यों आज मैं अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और वो प्ले हो नहीं रहे हैं. ये कोई टेक्निकल इशू है या ये मेरे आने से ही हुआ है, आई डोंट नो. लेकिन हम गाने को प्ले करेंगे और गाना मेरा हो चुका है गुम और मिल भी चुका है दोबारा से. सो हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल सईद और इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे. और मेरे ख्याल से हम डायरेक्टली चले जाएंगे न्यूज ब्रेक और फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक एंड दोनों के बाद हम वापस आएंगे. एंड वापस आके हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर

0: It's 12 p.m. This plan check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: मार्च के इक्वी मूड के वजीर आजम की सदारत हेठ अहम इजलास जरियन मौजूद इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार मोहसिन नकवी ए आजम नजीर तारण ए बया शरीक थे नमाज या बेन ऑप्शन से गौर कर राणा सनाउला है पीटीआई क्यादत मार्च नथी रोके असा खेन रोकण जो बंदोबस्त कर मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने का आगे रोको वो सोशल मीडिया से वेठल मान पीटीआई के डिक्टेट कर रहा है गलतियों मां न सिखंदासीं त कडहिं तरक्की न करे सघंदासीं अस्करी कामयाबियुनि सां गॾु मुआशी कामयाबियुनि में बि फील्ड मार्शल जो किरदार सारा जोगो रहियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे ज़िक्र खां सवाइ समूरियूं कामयाबियूं अणपूरियूं आहिनि आई एम एफ जे सरबराह चयो त हीउ नओं पाकिस्तान आहे बजट में ॾिनल मराइतनि जा नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिकु मिसाल क़ाइमु कयो इनशाला ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान दुनिया जे मज़बूत मैशियत हूंदी पाकिस्तान जे अफगानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फिज़ाई कार्रवाई 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया सुलसुमारे वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई कई वई ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में ऑपरेशन केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया बलोचिस्तान जे ज़िले कची में फोर्सिस जी कार्रवाई 6 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी फोर्सिस मौजूदु दहशतगर्दनि खे क्वाड कॉप्टर ज़रिए निशानो बणायो वियो फोर्सिस जे उत्तर वज़ीरिस्तान में बि कार्रवाई कई केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया हलीमा खान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर केस ॿीहर मुलतवी कयो वियो रावलपिंडी जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत पीटीआई बानी जी भेण हलीमा खान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर केस जो फ़ैसिलो ॿीहर मुलतवी कयो फ़ैसिलो 22 अक्टूबर ते ॿुधायो वेंदो सऊदी अरब कंहिं बि हमले या ख़तरे जो जवाब ॾियण में न कीमाईंदो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शोरा काउंसिल जे सालियन इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हुसैन नफ़रा तफ़री तबाही ऐं ख़िते खे धमकाइण जी चूंड कई आहे सऊदी अरब सूडान जी वहदत जी हिमायत बि जारी रखंदो

कराची में यूनिवर्सिटी रोड ते बीआरटी मनसूबे में शामिल पुल जो तामीर हेठ हिस्सो किरी पियो। वाके सबब एक सिक्योरिटी गार्ड दबजी फोत थी वयो। इंतजामिया जो चवण आहे त पिलर ते रखियल स्ट्रक्चर किरण सां हादसो पेश आयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। बलूचिस्तान जे शहर ओस्ता मोहम्मद में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो पॉसिबल है गाड़ी।

0: गोलियूं हणी कतल कयो। पुलिस मौजूद वाक्य पुराणी दुश्मनी तां पेश आयो आहे। जांच कई पई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 31 05 109 03000 31 05 109।
7: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-400।
1: होंडा मोटरसाइकिल जो बाअख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल

0: जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
2: अदा
3: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुकसाए और जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एंड सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम एंड सुपर वाइट की बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं. तो जी इसी के साथ हम चलते हैं आगे एंड हम प्ले करने जा रहे हैं एक और सॉन्ग और सॉन्ग के साथ हम चलेंगे आगे और आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट्स और क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुपर वाइट के

0: के साथ साथ कॉलर्स को भी इंटरटेन करेंगे. एंड हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हम एक और गाना प्ले करते हैं. तो सोचते नहीं है, प्ले करते हैं. और थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं, सो मेरे जहन में एक गाना आ रहा था और वो मेरे सामने भी आया. और यह है जी इस खानी ओएसटी, बहुत सारे लोगों का फेवरेट ओएसटी, नॉस्टैल्जिक सॉन्ग
1: मेरे जिस्म को जुदा.
0: और साथ साथ कॉल्स लेते हैं जी. सो नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हेलो. आगे जी बच्चे रो रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको पता नहीं चल रहा है कि कॉल लग गई. जिनकी कॉल लग गई असल में उनके बच्चे रोना शुरू हो गए. खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: जेकमा
0: बास से बात कर रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
2: जी सना खान मस्तोई.
0: अच्छा सोना खान मस्तोई भाई, सोना खान मस्तोई कैसे, ठीक ठाक?
2: आपकी तबीयत कैसी है?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइए गा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: हाँ बिल्कुल बहना, मैंने अभी जो है आपका प्रोग्राम सुना था, सुना था फिर आपने क्या कहा, बहुत सारी टाइप कॉल हमने जो है अभी हमने साथ किया सुनने.
0: ओके तो मुझे बताएं कि प्रोग्राम में क्या तब्दीली आई है?
2: बस तब्दीली देना, मैंने आज ये स्टार्ट किया है आपका और फिर क्लास हम प्रोग्राम सुनेंगे. और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हर प्रोग्राम से जो है ना आपका फिक्र होता है प्रोग्राम देने.
0: चले जबरदस्त, थैंक यू. और कुछ कहना चाहेंगे?
2: बस और यही कहना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट का नाम जो है ना बार बार लेंगे, हमारे जेन में आ जाएगा तो हम खरीद करके अपने चेहरे

0: जो इस्तेमाल करने को देना आपका प्रोग्राम ये हमने पहली बार सुनाया, बाकी वैसे प्रोग्राम का नाम तो वो ये जिंदगी गुलजार।
1: बिल्कुल ओके, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सुना खान मस्तूई भाई, हाफिज। एंड गाना प्ले किया था

0: साथ साथ, मुझे नहीं पता था कि ये डायलॉग्स के साथ वाला ओएसटी है. खैर हम इसको चलने देते हैं और साथ में कॉल्स लेते हैं. जी 03000113488 एंड नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
1: सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: जी एम बलोच बात कर रहा हूँ.
0: जी एम बलोच भाई, कैसे? ठीक ठाक प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक. आपने एक साथ लगा दिया प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए.
0: सॉरी,
1: आपका जो ये लॉन्ग पीरियड जो
0: मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई और कॉल भी ड्रॉप हो गई आपकी. जी एम बलोच भाई मेरे ख्याल से कोई शिकायत लेकर आए थे. अच्छा, मैं एक महीने बाद आई हूँ तब भी आप लोगों की शिकायतें खत्म नहीं हुई.

0: हम ये वाला सुनते हैं एजी एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है एजी और मुझे नहीं पता ये आप लोगों का फेवरेट है या नहीं और मेरे ख्याल से होगा ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम. अच्छा बाय द वे आतिफ असलम का एक न्यू एल्बम भी रिलीज हुआ है उसके कुछ गाने जो कि मैंने अपने शोज में प्ले किए थे और कुछ नहीं किए थे. क्या ख्याल है वो भी करें हम वो भी करेंगे. थोड़ा सा सबर थोड़ा सा हौसला और सुपर वाइट
1: में कहीं डूब जाने दो लहरों में कहीं डूब जाने दो
0: सुपर वाइट. अच्छा सुपर वाइट से मुझे एक वो वर्ड याद आता है वो तब यूज होता है कि जब आपको कोई चीज या कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब कि इतना ज्यादा अच्छा जिसको आप लफ्जों में बयान ना कर पाए तो वो कुछ इस तरह से था कि सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्स भी एलिडियशियस
1: जल में
0: तो ये कुछ है जो कि कहा जाता है तो ये कह के दिखाई इसको कहना आता है कौन कहेगा कॉल पे आके. मेरे ख्याल से सरदर्द कह देगी सरदर्द कर लेगी वो ही कर सकती है.

0: It's 12:30.
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
2: अरे नहीं, खुश और बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट अनुसंगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजर रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569.
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूअर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
0: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
0: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
1: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایں فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر FM 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے FM میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
0: آفیس جی میراپور FM 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے
5: تین دن کی इस्तेमाल से विजिबल रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना कोरियन स्किन बनने की तरफ जा रही है. और सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसका फेस वॉश भी आता है जी, सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश, तो इसको भी यूज किया जा सकता है इसके साथ. और करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जल्दी से कोरियन स्किन बन जाए तो अपने रिजल्ट्स को मजीद और इनहेंस करेंगे. और सुपर वाइट का कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करेंगे तो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, डीप क्लींजिंग देगा, स्किन को ग्लो देगा. और इसमें मौजूद है कि माइक्रो बीट जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल सेफ और हेल्दी है. तो इसको यूज करें और यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो टेक्सचर है या उसकी क्वालिटी है या जो उसकी पैकेजिंग है इतनी कमाल की है. तो उसको यूज करने से आपको मिलती है जी कोरियन स्किन. तो कोरियन स्किन को आप लोगों ने करना है क्या करना है, अपनी स्किन को कोरियन स्किन बनाना है. हाँ ये कह रही थी मैं. अच्छा साथ साथ 03000113488 के ऊपर आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव कर रही हूँ और बहुत सारे कमेंट हैं आप लोगों के, बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के. और बहुत सारे मैसेजेस के साथ साथ कमेंट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे जी. सो मैसेजेस हमें करते हैं बहुत सारे लोगों ने, सो हम मैसेजेस को इंक्लूड करते जाते हैं जी. महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं और कहते हैं कि सिस्टर अस्सलामुअलैकुम, आप हमेशा गुलाब की फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम जिंदगी गुलजार है. अच्छा आपने मेरा नाम गलत लिखा है, मैं नाराज आपसे. ठीक है तो वेरी बैड. वैसे मुझे पता है कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और सुनते रहते हैं तो नाम सही लिखा करें.

और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के जिनको हम इंक्लूड करते जाएंगे जी. और गुड आफ्टरनून फर्स्ट टाइम वेलकम टू यू रिस्पेक्टेबल माय कॉल इज डिस्कनेक्टेड योर प्रोग्राम इज सुपर वाइट राइस बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स परचेजिंग जी एम बलोच मीरपुर खास. अच्छा जी परचेज करेंगे ठीक है जी. थैंक यू कि आप परचेज करेंगे और थैंक यू फिर आप परचेज करने के बाद मेरा करेंगे कि आपने प्रोडक्ट्स मुझे बताए और मैंने लिए और फिर जब मैंने इस्तेमाल किए तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो ये आप कह रहे होंगे.

0: अच्छा साथ साथ हम कॉमेंट्स की तरफ मूव करते हैं
1: जी, और कॉमेंट्स हमें हाले सुल्तान ने बहुत सारे कर दिए, किंजा रानी हमें सुन रही है, मजा नहीं आ रहा, मजे करवाते हैं आपको, ठहर जाए आप ठीक है। अच्छा हाले सुल्तान नाइस है सॉन्ग स्वीट आर्जे, वाह सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग प्ले किया, कौन सा वाला? अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर खुशबू अच्छी है तो मैं भी परफ्यूम नहीं यूज करूंगा, डन हो गया।

0: सक्खर FM 88
1: सक्खर की आवाज। अच्छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो पेशा है आर्ट क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐ वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके की तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में आयो नओ रंग नओ अंदाज ऐ नई ताजगी अडे पंजे वेजे स्टोर ता आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पंजी खूबसूरती के जो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
2: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो कोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिला जारी हैं चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, पंज सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवां के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकम्मल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 07115635642 आई 03108166111 44 सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जसूर

0: मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाब यात्रा, गुर्दन की पथरी, बवासीर, बेओलादी, वारन जो किरण, गंजपन, फॉलेज, खारिश, बेन मुख्तलिफ़ सेहत की तकलीफ़ लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिन। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन सखर। टाइमिंग छंछर का खमीस सुबह 10 AM का शाम 5 PM ताई। अपॉइंटमेंट मालूम लाए हिंसा राबो कर 0326 22 00 440।
1: सखर FM 88 सखर की आवाज।

0: Once again, I'm Sunwani. Zindagi Gulzar is sponsored by Super White, Aksa Gusmerdek. So, Sansan, aap logi calls, hum entertain karenge. Ji, and next caller, hello.
1: Hello, assalamu alaikum, bhai.
0: Wa alaikum assalam. Sagar bhai.
1: Ji, main Sagar.
0: Sagar bhai, kaise thi? Thak?
1: Yes. Main pichle 6 din se call chal rahi hai, attend kiya hua hai.
0: कॉल चल रही है. चले, अच्छी बात है ना कि कॉल चल रही है.
1: तो ये प्रोग्राम आपका चल रहा है या बंद हो गया है?
0: प्रोग्राम चल रहा है और बंद क्यों होगा?
1: मैं 2 हफ्तों से ट्राई कर रहा हूँ. नंबर पावर ऑफ.
0: असल में 2 हफ्ते से नहीं, पूरे महीने से प्रोग्राम नहीं हो रहा था. आज पूरे 1 महीने बाद में आई हूँ और 1 महीने बाद प्रोग्राम हो रहा है.
1: अच्छा,
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. खैर, हम आ चुके हैं वापस. तो
1: 6 मिनट से कॉल चल रही है, 6 मिनट से आपने अटेंड कर दिया.
0: 1.5 मिनट से अटेंड कर दिया. बस मैं यही कह रही थी ना कि सागर भाई की कॉल ना कटे. है ना, तो ये सोच के मैंने ना कॉल उठा के रखी आपकी.
1: थैंक यू.
0: अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? प्रोग्राम क्या कुछ सुन रहे हैं पहले तो मुझे ये बताएं. प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
1: सुन रहा हूं, तभी से कॉल की है, सुन रहा हूं ना.
0: अच्छा, हाँ, ये बात भी है. अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोग्राम में क्या तब्दीली आई है?
1: प्रोग्राम में तब्दीली क्या है? मैंने तो सुना ही अभी आज
0: सुना ही आज है. अच्छा, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि हाँ, ये तब्दीली आई है.
1: तब्दीली यही आई है कि महीने के बाद आए आप.
0: ये भी एक तब्दीली है. चले, जबरदस्त. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: गाने का प्रोग्राम खत्म हो गया, सेगमेंट खत्म हो गया.
0: हाँ, गाने का सेगमेंट खत्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली.
1: चलिए,
0: कोई बात नहीं, कल दोबारा आएगा. कल लग जाएगी.
1: कल तो फ्राइडे है ना?
0: हाँ, फ्राइडे को भी आएंगे ना. अब छुट्टी थोड़ी है मेरी, मतलब कि ऑफ थोड़ी है वीक में. अब तो पूरा वीक आना है मुझे.
1: अच्छा, मतलब 1 महीने की पूरी जो है ना, पैसा निकल जाएगी.
0: हाँ, यही बात आपने सही कही कि वो 1 महीने वाली कसर निकल जाएगी.
1: तो अभी कितने बजे तक प्रोग्राम चलेगा आपका?
0: ये वही 11 से 1 बजे तक.
1: अच्छा,
0: ठीक हो गया.
1: मैं डेली, यकीन माने डेली में कॉल करता था, डेली रोज.
0: चले, अब आप डेली किया करेंगे और डेली आपकी कॉल लगा करेगी इंशाल्लाह. और ये सारी की सारी क्वेरीज इनकी क्लियर हो चुकी है और जिन लोगों की सेम क्वेरीज थी उनकी भी हो चुकी होंगी.

स्मार्ट किशोर कमेंट कर रहे हैं, नाम नहीं लिया कमेंट में, वाकई मैंने नहीं लिया। अगर नहीं लिया आप ले लेते हो स्मार्ट किशोर, आपका नाम लिया है, मैं क्यों नहीं लूंगी। अगर नहीं लिया, अगर हो सकता है नहीं लिया, बस मैं भूल जाती हूँ, मैं अपनी कई बात भूल जाती हूँ, लेकिन अगर नहीं लिया तो आप ले लेते हो स्मार्ट किशोर के मैंने कॉमेंट रीड किए थे, कंग्रेचुलेशन इन्होंने मुझे कहा था। अब्दुल जी कैसर हमें सुन रहे हैं, जी कहते हैं वेलकम वेलकम टू यू एज के अलावा। जी गाना हमारा खत्म हो रहा है, ये कुछ स्लो हो गया था ये वाला सॉन्ग, और मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ अच्छा सा हम प्ले करें, एंड नेक्स्ट सॉन्ग जो कि हम प्ले करेंगे वो टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स, और सुपर वाइट एंड अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं आप लोगों के लिए।

0: तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कपूर है। अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे मन को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ। तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है।
1: इसके अलावा जो सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करती है, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाती है जी, और आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देती है, ऑल स्किन टाइप को सूट करेगी, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देगी। अगर 3 दिन में अच्छा खासा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम के साथ सुपर वाइट एंटी डलनेस टर्मेरिक फेस वॉश भी जरूर यूज करें अपनी स्किन को बूस्ट करें।

मोरू, नौशहरों, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज। ये FM 88 नेटवर्क।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: सूरतयाल एम पी टी आई जे लॉन्ग मार्च के मुंह ॾियण लाइ तयारियुनि बाबति आगाह कयो. कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के पी के में गवर्नर राज एमरजेंसी बाबति कानूनी ऐं आइनी सूरतयाल खां आगाह कयो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ के पी के जी सूरतयाल ते सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं ॿियनि स्टेक होल्डर्स खे इतमाद में वठण जो फ़ैसिलो कयो. वज़ीर आज़म जे मामले सदर ऐं ॿिए सियासत क़यादत सां जल्द मुलाक़ात जा इम्कान. पीटीआई क़यादत मार्च नथी रोके त असांखे रोकण जो बंदोबस्त करे छॾियो आहे. मार्च खे इस्लामाबाद पहुचण खां अॻु ई रोकियो वेंदो. वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त सोशल मीडिया ते वेठल माण्हू पीटीआई खे डिक्टेट करे रहिया आहिनि. ग़लतियुनि मां न सिखंदासीं त कॾहिं बि तरक़ी न करे सघंदासीं. अस्करी कामयाबियुनि सां गॾु मुआशी कामयाबियुनि में बि फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर साराह जोॻो रहियो आहे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे ज़िक्र खां सवाइ समूरियूं कामयाबियूं अणपूरियूं आहिनि. IMF जे सरबराह चयो त हीउ नओं पाकिस्तान आहे. बजट में ॾिनल मराहतनि जा नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि. पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिकु मिसाल क़ाइमु कयो आहे. इनशाला ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान दुनिया जे मज़बूत मैशियत हूंदो. वरी वज़ीर सैद मुरादरी शाह जी तारत हेठि काबीना जो इजलास. सरकारी ज़मीननि जे अलाटमेंट ऐं इस्तेमाल बाबति नओं कानून आणण जो फ़ैसिलो. कॉलोनाइज़ेशन एंड डिस्पोज़ल ऑफ गवर्नमेंट लैंडर एक्ट 1912 जी जाइ ते सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 जो मसौदो पेश कयो. मुराद शाह जी काबीना मेंबर्स ते नए कानून ते 10 ॾींहं अंदर तजवीज़ूं ॾियण जी हिदायत. सैद मुरादरी शाह चयो त सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 बाबति फ़ैसिलो काबीना जे ईंदड़ इजलास में कयो वेंदो.

0: पाकिस्तान जे अफगानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फिज़ाई कार्रवाई 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सुध समा वारी वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़ब उल हक़ तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई कई वई, ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में ऑपरेशन, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान जे ज़िले कच्छे में फोर्सिस जी कार्रवाई, 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस मौजूद दहशतगर्दनि खे क्वाड कॉपर्स ज़रिए निशानो बणायो वियो। फोर्सिस जे उत्तर वज़ीरिस्तान में बि कार्रवाई कई, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। अलीमा ख़ान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर ते केस वीहर मुल्तवी कयो वियो आहे। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी टोड़ अदालत पीटीआई बानी जी भेण अलीमा ख़ान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर केस जो फ़ैसिलो वीहर मुल्तवी कयो। फ़ैसिलो 22 अक्टूबर ते ॿुधायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही है हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट, सुपर वाइट।
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 315 109 03000 315 09।
7: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
8: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जी हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
9: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003
7: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
10: अस्सलाम वालेकुम अदा
11: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
10: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
11: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
10: न अदा
12: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
10: मुझे दुकान जी बे डरंदी
11: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
10: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
12: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
11: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
13: 0301-399-2836

सिंध की आवाज जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं ये जरा उन लोगों को बताएंगे जिन लोगों को नहीं पता कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन ब्यूटी सोप है, नहीं बल्कि ब्यूटी फेस वॉश है। ऐसे जब ध्यान कहीं और चला जाता है तो फिर ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ओके जनाब सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश ये दोनों प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में इन है। अगर आप जाते हैं तो कहीं से भी आपको आसानी मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर फर्ज कर लीजिए कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिल रही है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको नंबर्स बताए जाते हैं जिनके ऊपर आप रब्ता करके इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और उनका अलावा तमाम इस्तेमाल करना मानो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तमाम के बुधाईंदी हला तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है उहा प्रोडक्ट आहे उहो प्रोडक्ट आहे जेको तमाम जी स्किन जे लाए तैयार कयो वयो आहे। आई न सिर्फ तमाम जी स्किन जे लाए तैयार कयो आहे बल्कि तमाम जी खूबसूरती अगर जेका तमाम के मिले थी उन खूबसूरती जी हिफाजत भी थींदी रहंदी। आई तमाम जे चेहरे ते जेका प्रॉब्लम्स आहे काफी टाइम का प्रॉब्लम्स हलन पया पर तमाम के समझ में नथो अचे त उन प्रॉब्लम्स के कीअं खत्म करणो आहे। आई तमाम इलाही सारा प्रोडक्ट लगाए चुका है पर तमाम के को भी रिजल्ट न मिलियो आहे, उल्टो तमाम जी स्किन अञा मजीद खराब थी वई आहे। त उन सब सिचुएशन में तमां के बस हिकड़ो कम करनो आहे, तमां पांजे करीबी जनरल स्टोर से हलिया वनो आई तमां हिकड़ो अदद डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो परचेज करिए जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिकाए जदी तमां परचेज करे इंदा त कुछ निशानियों तमां के याद रखनियो आहे। जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमां वठण वनो था त दुकानदार तमां के का बी प्रोडक्ट न दई सडे उन जी वजह से तमां के खबर हो जे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा जो डब्बी के मथा फोटो है ना वो डॉक्टर माई जो फोटो अव यह चीज इकड़ी याद रखो। हाँ जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो डब्बी है उनते डॉक्टर माई जो फोटो है यह चीज याद हो जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम वडन वडन अखरन में लिखल अथस समझी वह सो तुम बिल्कुल सही प्रोडक्ट जदी परचेज कर तदी तुम्हें सही रिजल्ट मिलना ना। अक्सर मू अचे चवन तो भाजी अस तवो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रिजल्ट को मिलो है हालांकि गाल यह होंगी तो उन्होंने रिजल्ट ही जो है उन्होंने क्या मिलो छो तो प्रोडक्ट ही कोई बो लगा हों जी तुम दुकानदार वट वनो था वट वो प्रोडक्ट ना जो तुम वन वाया हो तो वो जाहिर गाल तुम्हें कोई बो प्रोडक्ट दई छो एतरा मासूम आयो एतरा मतलब मासूम आयो मुख्य खबर ना पवी तो इन अड़े दौर में तुम एतरा मासूम कि आयो। हाँ जी इतना मासूम होना भी जुर्म है इतना मासूम।

टी स्किन प्योर क्रीम अची वही है तो इनके सफा इग्नोर न कर मुझे चवण से एक मरतबा लाजमी लगे दसो तवा के रिजल्ट्स एतरा कमाल मिलंदा ता पानी चंदा सिदरा बाजी सफा सही पई बुधाई डी स्किन प्योर क्रीम के अंदर जी वाइटमिन बीट्स माइक्रो बीट्स आन इन जो थोड़ो खुलासो कंदी हला मान त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी अंदर वाइटमिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स जो शा कम आ ही जेके माइक्रो बीट्स वाइटमिन ई बीट्स आ ना ये बाबा पूरे पाकिस्तान में हिडा हिडा मतलब करोड़न जी तादाद मुख लगंदो आ प्रोडक्ट्स आ तो उनन हिडन सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ ब या टे प्रोडक्ट आ जेन जी अंदर वाइटमिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स के एड कयो वयो आ इन जो रीजन यो आ त तवा के जेको रिजल्ट मिले वो एड़ो रिजल्ट मिले जी तवा कोई महंगो फेशियल लगायो आ तवा किथा महंगे सैलून मा थी आया आयो तवा जो जने फेस ग्लो कंदो तवां के खूबसूरती मिलंदी पो तवां पाण चंदा बाबा असा पेरा छोन प्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो खैर हाने भी देर कोने थी आए ता हाने भी लगाए सगो था हाने भी वठी सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटमिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स आ जे क्या ना ई बाबा शो स्टॉपर आ है इनन प्रोडक्ट जी जेको आ ना सफा लेवल के वधाई छड्यो आ है सो अगर तवां भी इस्तेमाल करन चाहियो था ता इस्तेमाल कयो हर स्किन जे मथा लगाए सकजे थो हा सिर्फ सिर्फ बर रातन में तवां के रिजल्ट मिलंदो वाह साईं वाह ये तो कमाल हो गया अगर तवां भी इस्तेमाल करण चाहे तुम्हारे घर में शादियों आहिन या वरी तुम्हारी पांजी शादी थी रही आहे त तुम भी लगाए सगो था मर्द हजरात लगाएं खवातीन लगाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कोई भी साइड इफेक्ट कोने छो तो बाबा ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे मेडिकेटेड फार्मूलो मतलब इनके डॉक्टर्स ठायो आहे जेके तुम्हारी स्किन के हिसाब से फार्मूला ठाईंदा ना बिल्कुल उन्हें सो ही डॉक्टर्स फार्मूलो ठायो आहे को भी टेंशन की गाल कोने का तुम लगाए सगो था दिल खोले लगायो पांजे करीबी जनरल स्टोर्स से अवेलेबल करायो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड तांके डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहो आहे डी स्किन जे फेस वॉश सा पांजो मुंह धोंदा रहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा रहो सोना सोना थींदा रहो सो ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको तवांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां इस्तेमाल करे ॾिसंदा इहा ॻाल्हि बिल्कुल इहा ॻाल्हि अथव सो तव्हां बि लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश हाणे जेके जेके सोणा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मूंखे ॿुधायो केरु केरु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पियो जो अवान सवाल पुछो है सवाल थोड़ा रिपीट कदासी जिन अना तक कौन बुध आए उनकी भी खबर पेजी वही जो असान प्रोग्राम में सवाल के जो फॉलो कर सकन तो सवाल यो पुछो है जिंदगी में सब का वो नुकसान तवजो कड़ो थो हाँ जी आइए आज हम नुकसान के बारे में बातें करते हैं वो गानो है ना कैसे हुआ खसारा बिल्कुल वैसे ही आज हम जरा अपनी जिंदगी के नुकसानात के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि बस हो जाती हैं और हमें बाद में रियलाइज होता है कि भाई काश ये ना होता काश वो ना होता तो जिंदगी कितनी अच्छी होती लेकिन ये जो काश होता है ना हमारी लाइफ के अंदर इसका होना भी मुझे लगता है कि जरूरी है क्यों क्योंकि अगर ये काश ना होता तो भाई हम तो बेमकसद जिंदगी जी रहे होते तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और मुझे बताइए कौन और कहां से हमें सुन रहे हैं आपके सिद्राव के साथ मौजूद है मुझे बताइए आप कौन हमारे साथ हैं।

दिखा के ऐसे आपको तो कोई नहीं लूट जाता ना फोटो दिखा के, क्योंकि आजकल एआई का ट्रेंड चल रहा है, इंसान कुछ एक ही और एआई उसे कुछ और ही बना देता है। तो आजकल मैं भी ये

रही थी कि आज तो ऐसा वाला सीन हो चुका है कि लोगों को आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अगला इंसान जो है वो रियल में कैसा है। तो अगर आप भी इन चीजों से बचना चाहते हैं और अपने लिए अच्छी खासी खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपको इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना देगा कि आपको फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई का सहारा तो खैर बहुत दूर की बात है, तो लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, मैसेजेस की जानेब आ जाते हैं।

भाई ये गाना फुल वाइब वाला है। अलीशा हमें सुन रही हैं थारो शाह से। मामू परवेज अली चांडियो आपका शो सुन रहे हैं, मामू को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। और आपके एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जेन और आप एक ही सिटी से हमारा शो सुनते हैं, और जेन ने कल परसों ही बताया था कि थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, तो हम अवेलेबल कराते हैं। अच्छा फहीम भाई कहते हैं ये टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप हमें सवाल का आप जवाब नहीं देते, मैं दूंगी आज, दूंगी तो आप भी दीजिए। फरवा बहुत शुक्रिया आपका। चाचा कहते हैं अच्छा लगते हैं वालदेन और बहन भाइयों की जुदाई जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ये टॉपिक आंसर। ओके अच्छा हमारे साथ ही हमारे प्यारे तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। और मोहम्मद जमान हमें सुन रहे हैं, वेलकम, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई। और अली रज़ा हमें सुन रहे हैं दुबई से, ओके कहते हैं सही है भाई, सही है अली रज़ा भाई, जियो करे सर। और गाना सुनिए। अच्छा तारिक भाई ने लिखा है हैप्पी बर्थडे सर इरफान सियाल साहब, हां जी आज इरफान सियाल साहब का हैप्पी बर्थडे है। और दाऊद अली पिताफी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आगे दाऊद पिताफी, मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो जी, वालेकुम अस्सलाम कबूला। और अली रजा भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरवा आपने भी बर्थडे विश करी है, थैंक यू सो मच। अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि जिस कदर तलब होती है मुझे तेरे मुमकिन है के तुझे बताने के बाद जो अच्छा तुझे बनाने के बाद जो मिट्टी बची हो उससे मेरा दिल बनाया गया हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ये ना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कोने डसे हो तो सही खबर तो पवे। यासीन खंड में सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो, तबीयत कैसी है, आपका शो नंबर वन होता है। और मैं डी स्किन शॉप के दूसरी अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की दूसरी डब्बी भी लेकर आया हूँ, बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है और खुशबू भी बेहतरीन है, क्या बात है, तमाम दिल्ली खटे छो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बी डब्बी वी आया, ॾिसो माण्हू ईअं ई कनि पिया जेके जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कनि पिया, तव्हांखे एतिरो मज़ो अची वेंदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए, तव्हां पोइ हिक छा बच्छा टे छा सौ दॿियूं लॻाइण ते मजबूर थी वेंदा। सो लॻायो बबल लॻायो।

हां जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सिद्रा माफ कर देना अगर कोई गलती हुई हो मुझसे, तो अब हम भी हद में रहेंगे मैसेज करके। क्या हुआ भाई, तां के बैठे बैठे वरी साथी हुए। और किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं, अदा ओ मुझा प्यारा क्यूट अदा स्मार्ट आयो जाए सच गाला जा अच्छा। कहते हैं अदा आओ अवहां जे चवण ते स्टोर ते वन्या, पर वापस केंजे चवण ते अच्छा था, वापस भी मुझे चवण ते अच्छो छो तो मां चंदिया ता वठी अच्छो सही आ माइने चंदे ता ता सिर्फ वन्यो ता वठी अच्छो माना मोटी भी अच्छो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता वठी ना आई तवां जे पंजे करीबी जनरल स्टोर्स ते भी अवेलेबल आ है। अच्छा तारिक भाई कहते अदी थारो शाह में अवेलेबल करवा दी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, बुद्धो बाबा बुद्धो जेन तमाम भी बुद्धो अलीशा तमाम भी बुद्धो थारो शाह में हाँ तमाम जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है। सो वन्यो वेठी डिसो तारिक भाई जी केडी फास्ट सर्विस आए, कल टोडियो गाल कई से हाँ ताजला डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल भी थी है। सो वन्यो बाबा वठी चो बो कहते कहते अवेलेबल कराणी आए, तुम मुख्य बुधायो जी असा बुधाए सकूं तवा के, तो उते मिले थी या नथी मिले डी स्किन ब्यूटी।

0: बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। और आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे ही नहीं, मुझे बताइए, और चाचा खालिद कहते हैं कि महर इरफान सियाल साहब को हैप्पी बर्थडे और कामयाब शो डी स्किन ब्यूटी क्रीम स्पॉन्सर्ड के लिए भी बेस्ट विशेस और रिक्वेस्टेड फॉर रिवॉर्ड गिव टू। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ सर। इरफान सियाल साहब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ओके जी, यहाँ पर हमने बहुत ही प्यारा गाना लगा लिया है और साथ साथ किशोर भाई कहते हैं कि आ चाहिए तो मुंजी मानू, अच्छा मुखे मानू
1: सारी रात तेरा तकिया।
0: भाई आप कुछ अलग ही मखलूक हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। अच्छा हमारे साथ दर्दे दिल आ चुकी हैं प्रोग्राम में, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं चंदा, गुड आफ्टरनून, कैसी हो, नाइस यू, ब्यूटीफुल, नाइस वॉइस, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच प्यारी। और फहीम भाई कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सर इरफान सियाल साहब। ओके इमरान खान रुख हमारे साथ है, हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। दर्दे दिल कहती हैं कि मैं निदा हूं और अलीजा आयशा भी साथ साथ हैं, शो सुन रही हैं। ओके जी, सब स्वीटीज को वेलकम कहते हैं। और जी दर्दी दल कहती कि इतनी प्यारी फोटो थी, क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया होगा? यस यस, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाया था, इसीलिए प्यारी फोटो आई थी बिना फिल्टर वाली। अगर आप भी प्यारे बनना चाहते हैं तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और आप बिना फिल्टर के भी फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आके चेहरे पर जो है ना इतनी ताजगी आ जाती है, इतना निखार आ जाता है, इतनी फ्रेशनेस आ जाती है कि लोग देखकर पूछते हैं भाई बुधाई होता है, चाहता इस्तेमाल करो।

ओके जी, हमारे साथ मौजूद है अली नवाज सारकी और कहते हैं मर इरफान सियाल साहब को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और कहते हैं एफएम पर एड चलाने की भी मुबारक। अच्छा हाँ, ये तो वाकई बहुत उनकी मेहरबानियां हैं और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल में पता ही नहीं मैं क्या बोल रही थी। अदा तव्हां डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई आहे कोन, मूंखे ॿुधाइजो। ऐं यासीन खंड तव्हांखे प्रोग्राम वणे पियो, थैंक यू। इन सज्जन को क्या तकलीफ़ पूछनी चाहिए वाके। अमानुल्लाह महर भाई, वालेकुम अस्सलाम। हिदायतुल्लाह लिखते हैं कि लोग तो लोगों के कहने पर लगते थे, लेकिन सदरा तुमने भी वही किया। भाई छा थियो आहे तव्हांखे, वेठे वेठे जिन चढ़ी वियो छा भला। मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी, कल्ह त चङा भला हुया।

पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया. आप मुझे पता है आप पोस्ट को लाइक नहीं करते, पोस्ट को लाइक कर दिया करें, कोई आपके पैसे नहीं लगते, तो लाइक और शेयर कर दिया करें. इससे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को हम बता पाते हैं कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और सारे लोग, मर्द हज़रात, ख़वातीन, सब इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए. अच्छा इतने टाइम थी वाहे न्यूज ब्रेक जो ना पोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी जल्दी मोटी तुम्हारी नासी तमाकारी नमें जेते बैठा हो जो ओ ही मनी ओ ही मोटू था. सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by...
0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by...
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: Sara jo gurayo ahe. Wazir Azam Shahbaz Sharif chayo ahe ta Field Marshal je zikr khan sawaye samuri kamyabi waan puri waan. IMF je sarbraah chayo ta hi nao Pakistan ahe. Budget mein dinal maraitan ja natija saamu achi raha ahe. पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मिसाल कायम कर इंशाल्लाह इंदर वक्त में पाकिस्तान दुनिया के मजबूत मैशियत हों दो वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह जी तारत हेट काबीना जो इजलास सरकारी जमीन के अलॉटमेंट इस्तेमाल बाबत नव कानून आणण जो फैसलो कॉलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लेंडर एक्ट 1912 जी जाय ते सिंध गवर्नमेंट लेंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 जो मसौदो पेश मुराद अली शाह जी काबीना मेंबर ते नए कानून ते 10 ॾींहं अंदर तजवीज़ू ॾियण जी हिदायत कई वई आहे मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जे मुदे में बि 15 ॾींहं जी वात कई वई आहे कमीशन 15 अक्टूबर ताईं कम करे सघंदी मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध गवर्नमेंट लेंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 बाबति फ़ैसिलो काबीना जे ईंदड़ इजलास में कयो वेंदो सीड़पकारीअ खे हथी ॾियण लाइ कम करे रहिया आहियूं मुआशी इशारा बे मुसबत आहिनि असांजो हदफ़ बरामदात ते ॿधल मैशियत आहे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त परॾेही सीड़पकारनि सां गॾु मुक़ामी सीड़पकारीअ खे बि सीड़प तरफ़ आणणो आहे महांगाई बे सिंगल डिजिट ते आंदी हुई जेका ख़िते में जंग सबबि वधी एफ बी आर सुठो कम करे पई सेप्टेम्बर जो हदफ़ हासिल कयो आहे सियासी इस्तकाम लाइ बि वेही ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं पाकिस्तान जे अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फिज़ाई कार्रवाई 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया सुध समाव वारे वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत अफ़ग़ानिस्तान में कार्रवाई कई वई ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में ऑपरेशन केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया बलोचिस्तान जे ज़िले कच्छे में फोर्सिस जी कार्रवाई 6 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि दहशतगर्दनि खे क्वाड कॉपरस ज़रिए निशानो बणायो वियो फोर्सिस जे उत्तर वज़ीरिस्तान में बि कार्रवाई कई केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया ईरान ते ॿीहर हमिलो करणो आहे या मुआहिदो फ़ैसिलो करण वारो आहियां मामिलो जल्दी पुॼाणीअ तरफ़ वधी रहियो आहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेजसेथ चयो आहे त अमेरिका ईरानी बहरिया फिज़ाई ऐं दिफ़ाई सलाहियत खे मुकमिल तौर ते ख़तमु करे छॾियो आहे हाणे ईरान मफ़लूज़ मुल्क आहे

0: सऊदी अरब कंहिं बि हमले या खतरे जो जवाब ॾियण में नकी बाईंदो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शोरा काउंसिल जे सालियाने इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हुसे नफ़रत तफ़री तबाही ऐं खिते खे धमकाइण जी चूंड कई आहे। सऊदी अरब सूडान जी वहदत जी हिमायत बि जारी रखंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
8: सुपर वाइट।

फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372 ऐं 0242-46-0100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो, मिरपुर खास मटियारी, सकरन मेहरापुर मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ही बातें हो रही हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों ना बातें हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि जब मैं बताने पर बैठ जाऊँ तो भाई ये 2 घंटे क्या मतलब पूरा दिन ही में बताते थक नहीं जाऊंगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की इतनी ज्यादा वाली क्वालिटीज है और इसके अंदर जो तमाम चीजें ऐड की गई है उसके कितने सारे फायदे आपकी स्किन के ऊपर आने वाले हैं वो तो तभी महसूस होगा जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताया करें ताकि हमें पता चले कि भाई साहब आप लगा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। उनके अलावा तमाम के प्रोग्राम में चौथा भली करी आया, प्रोग्राम के 2 घंटे में हम आ चुके हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। पोस्ट को जरा साथ साथ लाइक और शेयर करते जाइए, अपने होने का एहसास लाते जाइए। और मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ। यस, आज आप मुझे बताएंगे कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या हुआ है। उनका अलावा अगर तुम पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश की अवेलेबल कराना चाहियो था तो तुम्हारे जिला नंबर से जिन नंबर से तुम्हारा रातो करे इजिली पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो जाए या वरी डी स्किन फेस वॉश हो जाए उन्हें की अवेलेबल कराए सको था। सो जनाब नंबर आहिन 03-12-50-25-907 बड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-38-4309 बड़ी 332 73 84 309 ये उही नंबर आहिन जेके तव्हां डायल करे इजीली पंहिंजे कंहिं भी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सघो था। सो एतरी जबरदस्त तव्हां वटि अपॉर्चुनिटी मौजूद आहे, तव्हां इन मां ज़रूरु फ़ाइदो वठो ऐं तव्हां नंबर से रातो करे लाज़मी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराईंदा रहो। जी तव्हां जे लाइ आसानी हुजे बसि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से हलिया वञो ऐं तव्हां आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे परचेज करे सघो। ओके, सो अगरि आप बि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप यूज करने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि भाई ज्यादातर ऐसा हो जाता है ना कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट चाहिए या फिर कौन से प्रोडक्ट हमें लगाने चाहिए। जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उनका जो असर आपको मिला है वो तो आप देख ही चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें बचना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट से जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं और बहुत सारे इस तरह की चीजें ऐड की जाती हैं जो कि जल्दी में आपको गोरा तो बना देती है लेकिन बाद में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर छोड़ जाते हैं, तो अगर आप उन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, कुछ अच्छा कुछ इफेक्टिव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और मैं जो बताती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बिल्कुल सही बताती हूँ, क्योंकि वाकई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो वाकई इस तरह से प्रोडक्ट तैयार हुआ है कि आप उसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई लगा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर तो जनाब विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, तो ये 2-in-1 फार्मूला हो चुका है। यानी कि ये नाइट क्रीम तो बज़ाहिर है लेकिन ये आप लोगों को जो रिजल्ट्स देने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे कि जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो बातें ही जनाब वो बड़ी कमाल की है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ ये मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं कि भाई हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, आप सब लगा सकते हैं हर स्किन के ऊपर। चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है। तो जनाब खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जिल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम और फ्रेश महसूस हो, लेकिन उनके लिए ये चीज डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमने प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा आना चाहिए और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए रोजमर्रा की ब्यूटी केयर में आप भी शामिल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा। आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है, अच्छी तरह आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है और आपकी जो शख्सियत है ना उसमें भी ताजगी और एतमाद का एहसास हो जाता है। तो अगर आप भी अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन को मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज बिल्कुल आप सब लोगों के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए और खूबसूरती को वेलकम करते रहिए।
ओके जी, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का जो फेस वॉश मौजूद है तो उसका इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। डी स्किन का फेस वॉश अगर आप लगाने वाले हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलूं, तो डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये जनाब बहुत ही कमाल का और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो डी स्किन का फेस वॉश जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ये बड़ा ही कमाल का सीरम है। इसका इस्तेमाल अगर आप अपनी स्किन के ऊपर करते हैं तो उससे क्या फायदा पहुंचता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और आपकी स्किन डीपली क्लीन रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इतने काम करते हैं, घर के बाहर आप काम करते मर्द हजरात जो हैं, तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा गंदगी, मिट्टी, पॉल्यूशन वगैरह जमा हो जाता है और उन चीजों को हटाना, रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी डी स्किन फेस वॉश का यूज कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि आपके चेहरे पर जो है ना ये तमाम चीजें रिमूव हो जाएंगी, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगी, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल हो गया जनाब, और ये कमाल सिर्फ और सिर्फ डी स्किन फेस वॉश से ही हो सकता है। तो डी स्किन का फेस वॉश आप लगाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाइए और लगाकर मुझे जरूर बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। जैसे भाई बहुत सारे प्यारे लोग आकर मुझे बता देते कि बाजी हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, या बाजी हमें ये वाली जो है ना प्रॉब्लम थी वो अब खत्म हो चुकी है, हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर बिल्कुल जी प्यारे प्यारे हो चुके हैं। तो यही बिल्कुल चीज है, मैं आप सब लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप सारे लोग मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल आपको कैसा मिला है, और साथ साथ आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। भाई साहब, अच्छा प्रोडक्ट होना अभी आपकी जिंदगी में गनीमत होता है। तो अच्छा प्रोडक्ट अब आपकी जिंदगी में मौजूद होगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, तो लाजमी से यूज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके कुछ फीडबैक्स हैं जिनको हम शामले प्रोग्राम रखते हैं। तो जनाब जी, हाँ जी, यहाँ पर आप जो फेसबुक पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जितने भी लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर देते हैं तो उनसे गुजारिश है जनाब कि बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोग्राम को पहुंचाया करें, ताकि हम लोगों को बता सके कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं। अच्छा फरवा कहती है कि टॉपिक आप ही, मैंने जिंदगी में एक खास इंसान खोया है, जिंदगी में खास इंसान को खो दिया, क्या बात है जी। और यासीन खंड, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुना देंगे, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा जरा। उनके अलावा अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुझी लाइफ में इलाही नुकसान थिया, पर हेकु नुकसान जी भरपाई न कोई करे सगयो, नहीं कोई करे सगंदो नुकसान मुझी अम्मी। हाँ भाई, ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई तो वाकई कोई नहीं कर सकता, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अमानुल्ला महर भाई हमारे साथ हैं, क्या वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को, मेटा ऑफिशियल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हेलो। अलीशेर बिरोही हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, बहना सिद्रा कैसी हो, शो बेहतरीन हो रहा है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में ना मीरपुर बटोरो में नहीं मिल रही, चलें आपके एरिया में भी अवेलेबल करा देंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

वाह साईं वाह या खूबसूरती अथव जॾहिं तव्हांखे बि मिलंदी जॾहिं तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा। अलीशेर बिरोही भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। नसीम गुलाम दीन भाई हमें सुन रहे हैं नूरियाबाद से। भाईजान में ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। उनके अलावा नसीम भाई लिखते हैं कि मुझे वक्त अच्छा जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाजें जानी पहचानी सी लगती है। और क्या कहते हैं, हाँ जी बहुत शुक्रिया। और इब्राहिम खान हमारे साथ यदि मंजूर का सॉन्ग सुनाए हाजिर बात आजी फरमाइश लगायूं था। और दर्दे दिल लिखती हैं कि ले गया वो सब कुछ मगर हौसला रहने दे, यानी वीरान हवेली में एक दिया रहने दिया। हम गए थे उसके पास उसे मनाने के लिए, वो खफा अच्छा लगा हमने खफा रहने दिया। रोटो भलो परचण खां पोइ वरी साई दो ये ना। अच्छा अली रज़ा लगारी भाई मोहबतुआ तव्हांजो प्रोग्राम पसंदि कयो पिया। और यासीन खंड कहते हैं आपका शो थर पार्कर से सुनता हूं। बहुत

अच्छा फहीम लिखते हैं कि अदा सर खालिद भी अच्छा इंसान है. बिल्कुल बिल्कुल, चाचो इज ऑल्सो गुड मैन. अच्छा रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम असलम कहते हैं कैसी हो बेना, जो नाइस चल रहा है, सॉन्ग लिंक भेज रहा हूँ. जी बिल्कुल आपका गाना लगा देंगे. और मेटा ऑफिशियल लिखते हैं कि तुम सिर्फ मोहब्बत नहीं वो खूबसूरत इत्तेफाक हो जिसने मेरी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा हसीन बना दिया है. ओके थैंक यू. अच्छा रमजान भाई आपने भी शायरी भेज दी है, लिखते हैं कि दुनिया दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार की ताकत जमाने वाले क्या जाने, इतना दर्द होता है कब्र में ये ऊपर से फूल डालने वाले क्या जाने. ओके भाई क्या बात है, इतनी सैडी सी शायरियां भेज देते हैं. वासा भाई हमारे प्रोग्राम में कहते हैं मुझे प्यारी भेण अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाई, ठीक आए हो. नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, कहते वेरी नाइस आपका प्रोग्राम फ्रॉम मटियारी. ओके भाई को भी खुश आमदीद. अलीशा कहती है कि थारो शाह के किस शॉप पे आपने अवेलेबल कराई है और शॉप वाले का नाम बताएं ताकि मामू परवेज लेने जाए आप ही बता दें. अच्छा मैं अब शॉप का नाम आपको बता दूंगी. वैसे ऐसा किया करें कि थोड़े चार पांच शॉप्स के ऊपर जाइए, वहां से मालूमात आप खुद भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मामू को भेज दीजिएगा तो वो आपके लिए परचेज कराएंगे. ठीक है ओके जी वासु भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए. सैयद धानी बख्श हमारे साथ है. बदीन से आप हमारे साथ है भाई जान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. एसन अली बुक्टी भाई लाड़काने का था संजय प्रोग्राम बुध पया, थैंक यू सो मच. अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि मेरी उम्र का खसारा पूछते हो, यानी मुझसे लोग अब तुम्हारा पूछते हैं. मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा अब उससे, उन्हें यकीन नहीं आता वो दोबारा पूछते हैं. क्या बात है. अच्छा उनका अलावा हमारे साथी महर इरफान सियाल साहब कहते गुड आफ्टरनून मैम, वी आर लिसनिंग योर शो फ्रॉम बहावलपुर. क्या बात है जी, बहावलपुर से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. और उनका अलावा कामरान भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं. कामरान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और जी आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर अभी तक रहती है, क्योंकि अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर. ऐसा वाला सीन हो जाता है कि फिर आप मुझसे पूछते हैं कि बाजी हम कहां से जाकर परचेज करें, तो आप बस नंबर्स के ऊपर राता कर लिया करें. जैसे आप नंबर्स के ऊपर राता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भाई साहब करा देंगे, तो आप जाइए और परचेज करते जाइए. उनके अलावा ही वारो सॉन्ग लाए हुआ इंजॉय करना सीन. प्रोग्राम आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं, तो बहुत सारे आपके मैसेजेस जमा हो चुके हैं। यहाँ पर महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सिस्टर कूंज सिद्रा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप हमेशा गुलाब की तरह फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम गुड है सिस्टर। न्यू सॉन्ग सुनाए फायजा का, हाँ जी लगाते हैं आपके लिए। और हमारी साथी वालेकुम अस्सलाम अदा, आपको और एफएम की टीम को अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन सुमामीन। शहर गुलाब लगारी छोटा बाशम खान रिंद, और कहते हैं शहर गाजी खान रिंद से रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी कुनैन जहरा आपके साथ है। आपका शो सुन रहे हैं, शो लाजवाब है। हमें अंसारी, अच्छा हमीद अंसारी का गाना प्ले कीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे मिला तो आपके लिए लगा देंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। और चाचा खालिद आप हमारे साथ हैं जी, कहते हैं जी चाचा कर सकते हैं। और उनके अलावा तमाम वाली गानों भी लिखे हुआ है, बिल्कुल, तो आज गानों भी हलायूं था। मकसूद मलह हमारे साथ कहते हैं मेरापुर से हेलो आरजे डीजे सिद्रा मुस्कान साहिबा, मुझे शमन का गाना सुना दें। बिल्कुल जी, शमन का गाना आपने सुन लिया होगा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, और आप भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, ये तो बढ़िया हो गया। और हमारे साथ ही मौजूद सलाम सिस्टर जी, आप सब शो करने वाली, सच बोलते हैं, आपने रुखसार का कहा वो आ गई है, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके प्रोडक्ट्स परचेज करें। अहमद मुगल का गाना लगाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ भाई, अहमद मुगल का गाना आपको जरूर सुना देंगे। आप हमारे साथ हैं जी एम बलोच मीरपुर खास से, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, बस आपका ट्रस्ट जो है ना वो चाहिए होता है, और आप जब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में सही बोलती हूँ। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज आप सब लोग कर सकते हैं। और रसूलाबाद से आबद सिंह शंबानी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं अदी बड़ो नुकसान मुझो अच्छा कहते वो नुकसान नहीं हो तो मुझे डंद किरी पयो हाने उहो वो किथा भी न मिलंदो, दंद बाबा मिली वेंदो, यो को वड़ो नुकसान कोने को। आई तव्हां दिल नंढी न कयो, आई तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। अच्छा उन खां अलावा जेको आहे सो हिते टाइम थी वाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठी वेठूं था, ऐं पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी नासी तव्हां काठी न वञो, हिते वेठा हुजो मां, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, तावन से लगाते रहिए और शानदार सी खूबसूरतियां हासिल करते जाइए।

0: खुश्क ऐं बेरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
1: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

फंटागिरी फंटागिरी वापस आ चुके हैं दोबारा से प्रोग्राम में. आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज जितने भी लोगों ने किया है उनको जनाब बड़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं. तो अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जल्दी से कीजिए और साथ ही साथ खूबसूरत होते जाइए.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही सुपर कूल सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हो, और साथ ही साथ अगर आप भी हमारे साथ मौजूद है तो अपने होने का एहसास लाते जाइए। आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 पर और फेसबुक पर, उन्हें कहा अलावा। हाँ जी बिल्कुल, असा के रुगो हा में हाय आई जे की वरी हा में हा कना मुखे लगना थोड़ा उए मानु भला हुंदे जो तो हा में हा तक अंता नी कुछ मानु के तो सिर्फ न हो दिया न पुछ डीस कंप्यूटर के मंदा न बाबा डीज कंप्यूटर क्रीम जो इस्तेमाल कर हा में हा कना कर सही आई इस्तेमाल भी कर ये हा में हा खाली न कर इस्तेमाल कर वही हा चो डीज कंप्यूटर क्रीम अगर तुझे करीबी जनरल स्टोर से कौन मिले थी तो तुम नंबर से राबतो करीबी जनरल स्टोर से डीज कंप्यूटर क्रीम के अवेलेबल भी कराए सो था। सो डीज कंप्यूटर क्रीम है डीज स्किन जो फेस वॉश है तुम कड़ो प्रोडक्ट लगाइंदा या फिर लगाया था मुझे बुधाजो।

सौम्य जी, चाचा कहते हैं कि मैंने आपकी पोस्ट को बहुत ज्यादा शेयर कर दिया है। बहुत शुक्रिया चाचा, थैंक यू सो मच, आप हमारी पोस्ट को शेयर कर देते हैं। और हमारे साथ साजिद हुसैन सुमरो, शो वेरी नाइस है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वेरी वेरी नाइस है, डीआईजी ऑफिस लाड़काना से आप हमें सुन रहे हैं और फायजा का गाना सुनना चाहते थे, सुने जी फायजा का गाना। और हमारे साथ रमजान भाई, आपने लिंक शेयर कर दिए, ओके हो गया। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते हैं लाजवाब शो मेलसी से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे भाई। और अली रजा लगारी भा तमा गानो केड़ो चयो होयो, ओके ओके ओके, तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था तमाम के रिजल्ट भलो दिनो था, सो वाह साई वाह। रमजान भाई कहते हैं हाँ भा ठीक है ठीक है, तमाम जो बिल्कुल गानो हलायो था। और अबू हनीफ लिखते हैं कि 17 अरब ना 7 अरब लोगों में किसी एक शख्स का पसंद आना और जिंदगी में उसका ना मिलना उससे बड़ा खसारा नहीं हो सकता, क्या बात है जी, ये तो बढ़िया हो गया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि हाल दिल तुमको सुनाए तो सुनाए कैसे जख्म जो तुमने, अरे भाई क्या हो गया हिदायतुल्लाह, मुझे लग रहा है आपको किसी ने ना ऐसा रेंडम सा मैसेज कर दिया है और इस रेंडम से मैसेज की वजह से आपका थोड़ा दिमाग जो है ना वो सटक गया है, तो ऐसे रेंडम से मैसेजेस के ऊपर ध्यान ना दिया करे, आप हमारे प्यारे भाई हैं और आपकी होने से प्रोग्राम में रौनकें होती हैं, तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं चीजें हैं वो अपनी जिंदगी से निकाल दें, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक मार दें और डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते रहिए। नजीर खोसो भाई हमें सुन रहे बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जी, कहते हैं कि जिंदगी का हौसला देखो।

उधार है सॉन्ग होमेरा चन्ना का डेडिकेट आपको। अरे भाई होमेरा चन्ना का गाना आपको सुना देंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हमारे प्यारे भाई। और हमारे साथ हैं ये महल आबास, महल आबाद है पता नहीं क्या, गुलाम शबीर अबड़ो हमारे साथ हैं। अच्छा कहते हैं दिन है तो रात भी है, बादल है तो बरसात भी होगी, ए दिल गम ना कर महबूब है तो, महबूब है तो मुलाकात भी होगी। बाजी सिद्रा मुस्कान सरवर सकरानी की आवाज में कलाम सुनाइए, मतलब अजा सब मानो यार केर तो केंजे लाए मरे। मां दिसां थी भाव मुखे मिलियो गानो तो तवां जे लाइ हलाए वठूंदा। बहुत शुक्रिया तवां से सगड़ मौजूद आयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आ कोन मुखे लाजमी बुधाईंदा कयो। और हमारे साथ ही गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से अभी बुला थेबू कहते हैं आपका शुवरी नाई से आपको सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। मकसूद वाला कहते हैं सिद्रा मुस्कान मेरी जिंदगी में बहुत नुकसान हुआ है, बता भी नहीं सकता चुप भी नहीं रह सकता। हाँ यह भली गल ओके। और हमारे साथ है ये सलाम उस्ताद सिड्डो बाजी, जिस दिन आपका प्रोग्राम सुनता हूँ माइंड 10x काम करता है, बहुत जल्दी सबक याद हो जाता है, क्या लॉजिक है समझ नहीं आता, फिर दोस्त मोरो से हमारे साथ मौजूद है। भाई ये तो अच्छी बात है ना, प्रोग्राम सुनते सुनते आप अपने सारे काम किया करें। और दोबारा से आपने मैसेज किया है, हाँ वही मैसेज आपने दोबारा से शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया। फिर दोस्त भाई आपको वेलकम कहते हैं, खुश रहे हमेशा जीते रहे। और गुल हसन निंदवानी हमारे साथ है, शो वेरी वेरी नाइस आपका। प्लीज सिद्रा जलाल जोगी का सॉन्ग सुनाएं, फरमाइश है मेरा बेटा आजाद खान और आमिर खान मोहम्मद रिजवान। ओके जी सब भाइयों को वेलकम कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, थैंक यू सो मच। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताया करें, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप मर्द भी लगा सकते हैं और आप खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सारे लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो मेडिकेटेड फार्मूला होने का जो फायदा आप लोगों को मिलने वाला है वो सबसे बड़ा ये मिलने वाला है कि भाई आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो इतना कमाल और शानदार सा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो उसे फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए।

हाँ भाई, झंडो मरी वारा नजर कोन आया ना? बिल्कुल मां भी आ चीज नोटिस कई, एंड झंडो मरी वारा लगे तो वाकई चाचा डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वया आहिनि। सुठी ॻाल्हि आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर, हिकिड़ो ॾींहुं मोकल करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वया आहिनि। अच्छा, रिजवान अली हमारे साथ ही। हाय बहन, कैसी हो? शो आपका नाइस है, थैंक यू वेरी मच रिजवान। और किशोर भाई लिखते हैं कि तुर्जी अच्छा, शो के बीच में वाकई जब आपको कॉल सजाती होगी तो फिर सही नहीं होता होगा। मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, आपको भी वेलकम कहते हैं हमारे प्यारे मेहताब भाई। और रिजवान लिखते हैं कि कैसी तेरी खुदगर्जी सॉन्ग प्ले करना, ये गाना आपको मैं सुनाऊंगी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट नाइस है, आप बस गाना प्ले करना। ओके ओके, अच्छा हिदायतुल्ला लिखते हैं कि सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, किसी ने समेटा भी तो जलाने के लिए, अली जुलम आता सा। और फरवा कहती हैं, आपी असाम भी हा में हा करण वारा आयूं, अल्लाह जाए बुधाए फरवा, तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई को नमुख बुधाए जो। और मधोश हमारे साथ मौजूद है, मधोश भाई पक्का हा पक्का पक्का अल्लाह शाह जी। और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, वालेकुम असलाम कहते हैं आपको भी प्यारे भाई।

और कहते लाजवाब जबरदस्त शो, थैंक यू। अलीशा कहती है कि थारो शाह के किस शो पर आपने अवेलेबल कराई है? भाई मैंने कहा कि आप दो चार शॉप से जाकर मालूमात लीजिए, एक ना एक शॉप पर तो अवेलेबल हो ही चुकी होगी, तो आप जरा अपने मामू को भेजिएगा और ऐसे बोलिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब करें, ठीक है। और गुलाम अकबर खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, हाय वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक ठाक है? और मुदस्सिर अबड़ो हमारे साथ है, मुदस्सिर अबड़ो वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं? कोरेजा, अच्छा कोरेजा विलेज से आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और इसी के साथ ये वाला गाना लगाया, ये मुझे प्यारे एक भाई ने फरमाइश किया, रमजान भाई है शायद, उन्होंने फरमाइश किया, तो चलिए इस गाने को भी सुन लेते हैं।

मोगी जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हम तुम हो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी होनी चाहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को नहीं भूलें बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहो, खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, इसीलिए चाहती हूँ कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात बड़ी कमाल की लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट है और मर्द हजरात खवातीन आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स है, माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन है, अल्फार्बोटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये जितनी भी चीजें ऐड की गई है जनाब वो इसलिए आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को रिजल्ट्स देने वाली है ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कितना कमाल का प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है और साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो ये डॉक्टर माइका जो फोटो ना वो देकर लाजमी परचेज कीजिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप सही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए हर जगह अवेलेबल करा दिया है, जाइए और अपने हिस्से की डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश परचेज कराइए। अच्छा गुल हसन निंदवानी भाई लिखते हैं कि बाजी सिद्रा मेरी बेटी फातिमा भी आपका शो सुनती हैं, फातिमा को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। अच्छा मुगल उमरानी भाई आपको भी वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। दर्दे दिल कहती हैं कि नाइस शो था आज का, आयशा को भी पसंद आया, बहुत शुक्रिया आयशा। अच्छा ये मदन पंडित हमारे साथ हैं, मदन पंडित हमें सुन रहे हैं जी, आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं? हेलो मैम मैं नेपाल से, आप हमारे साथ हैं, अच्छा हमारा शो सुन रहे हैं, नमस्ते जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मदन पंडित जी।

अच्छा, जवाद अली कोरे जो है लिखते हैं कि दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे बस इख्तलाफ रखते थे। क्या बात है, क्या बात है। किशोर भाई कहते हैं कि अहमद मुगल जो आवाज सिंध टीवी जो दौर याद जा रहा है तो अल्लाह भली गाला ना, पुरानी चीजों जैसे ना याद करण गुर्जर। यासिन खान कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, चले अच्छी बात है, जॉब करे और अच्छे अच्छे से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते रहे। और कहते हैं बिल्कुल जी, चार चांद लगा देगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे पर। बिल्कुल जी, चार चांद लग जाएंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

जी जी, हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा सुना जाता है, हर जगह सुना जाता है, इंडिया हो, नेपाल हो, और हर जगह। ये तो भाई आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमारी पोस्ट को शेयर कर देते हैं, ये शेयरिंग का कमाल है। तो इसीलिए कहती हूँ पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी जो पोस्ट है ना वो ऐसे ही हर जगह पहुंच जाए और सारे लोग जान जाए कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा के देखे हैं, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तब भाई जान बात ही कुछ और होगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और अपने चेहरे पर ऐसा प्रोडक्ट लगाइए जो कि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है और आपकी स्किन के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाइए और मुझे बताइए आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। अच्छा, ज्वेलरी का खालिक लाशारी कहते शो A1, थैंक यू वेरी मच, तव्हां जो मोबिदू आहिनि, प्रोग्राम पसंद आयो। हाँ बाबा, तव्हां जो टॉपिक वारो मैसेज पढ़ी वरतो सिंह किशोर भा, और ये कहते हैं इसीलिए तो 10 साल से आपका शो सुनता आ रहा हूँ यासीन खंड वारे साथ। 10 साल हो चुकी है क्या मुझे प्रोग्राम करते करते? नहीं, 9 साल हुए हैं।

ओके जी, तुंहिंजी दिलि मूंसां नाहे, पर तव्हांजी दिलि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां लॻी वेंदी जॾहिं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसंदा। माण्हुनि सां दिलि लॻाईंदा त हीअं ॾुख ई मिलंदो, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां दिलि लॻाईंदा त ख़ूबसूरती बि मिलंदी ऐं तव्हां सेटिस्फाइड बि हूंदा। अच्छा, बिल्कुलु तव्हांखे गानो ॿुधणु ॾींदासीं।

अच्छा अदा कहते हैं कि मुखे डीटी जो मैसेज आयो हो चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथां मिलंदी डीटी के तव्हां ॿुधाए छॾियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाणे तव्हां जे मुल्क में भी अवेलेबल कराए छॾी आहे भीड़ में तन्हाई में वाकई मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम याद आती है आप अपना बताइए और इसी के साथ यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब आप लोगों से इजाजत लेने का वरी तव्हां सां मुलाकात मुझे जेका थे पई उहा 5 बजे वारे प्रोग्राम में थींदी बिल्कुल जनाब सो पंहिंजो इलाही सारो ख़्याल रखंदा ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत ऐं जंहिंजो को फीडबैक रहिजी वियो आहे को गानड़ो शानड़ो रहिजी वियो आहे सो माज़रत मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: अगर आप कोई ऐसा एग्जाम करते हैं चाहे
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News

0: जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
0: सुपर वाइट.
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज. मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे. इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं. नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में. एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें. दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम. हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें. मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109.
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन. जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो. हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे. तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो. सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था. असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल. ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे खुश्क और बीरोनों की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिनमें आहिन चावर जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हर दिन रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। आपते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे.
5: अमल आए हुकूमत पीटी आए बानी जी आजादी जो फैसलो नथी करे सके वजीर आजम जे सियासी मामलन वारे सलाहकार राणा सना उलाज जो चवण आए ते एमरजेंसी पसंदीदा अमल ना आए गैरानी कदम न खणण जे खातिर कराए वने त का वफाकी हुकूमत एमरजेंसी तरफ न वेंदी केपी हुकूमत वफाक ते चढ़त कंदी त पोए आइन में हल मौजूद आए
6: एमरजेंसी होगी ना वो होगा गवर्नमेंट रूल यही रूट है और क्या रूट है अनलेस के कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है खान का मैंडेट चलता है खान के डायरेक्शन चलते हैं किसी और के कहने से कुछ नहीं
5: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आए सुहेल अफरीदी के बाने पार्टी की हिमायत हासिल आए केपी में न एमरजेंसी लगंदी न ही गवर्नर राज लगंदो इस्लामाबाद में मीडिया से गलाइंदे पीटीआई चेयरमैन बिरस गौर चाहे डायरेक्शन रुगो बानी जे हलंदी आए लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही आए केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी ते गवर्नर राज लगी सके तो वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आयन मौजूद मशवरो दिनो वो केपी में गवर्नर राज आयन का मथा न हों पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नेहर हुसैन बुखारी है तो केपी में अमन अमान की सूरत हाल तक खराब है पीटीआई के भी रिलीफ मजामत से न पर अदल अमा मिल पीटीआई जो रवैयो सुठो ना है रो एतजाज नाले ते शहर ते हमलो करण कबूलण जोगो ना है पाकिस्तान नूरिस्तान वेट जो इल्जाम पाकिस्तान ते मुड़न के अफगान तालिबान जो नुसरो कूड़ करार दई छो इतलात वारे वजारत आज पाकिस्तान के इल्जाम जो मकसद तालिबान हुकूमत के अंदरूनी जबर ए अदम इस्तकाम तां ध्यान हटाण है अफगान तालिबान ताकत जबर जरिए अफगानिस्तान के अवाम से मुड़ल है तालिबान हुकूमत पे अंदरूनी मसलन की जिम्मेवारी बेन विझी रही है खिते के अदम इस्तकाम के वरचाण जो तालिबान जो तर्ज अमल तबाह कर रस्ते तरफ वही रो है आलमी अमन इस्तकाम तरक्की में चीन जो इंतहाई अहम किरदार है असां जो दिलियों एक बे से गडियल गड़ धड़कन थी सीपेक पुराने दोस्ती अवाम

हुकूमत एल पी जी जी फी किलो क़ीमत में 20 रुपया 68 पैसा आबाद करे छॾी। एल पी जी जी जो 11.8 किलोग्राम जो घरेलू सिलेंडर 224 रुपया 14 पैसा महांगो। एल पी जी गैस जी फी किलो क़ीमत 279 रुपया 34 पैसा थी वई। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि एल पी जी जी गैस जी घरेलू सिलेंडर जी क़ीमत 3296 रुपया 23 पैसा मुक़ररु कई वई। क़ीमतुनि जो तइन अक्टूबर लाइ कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लाथ करे छॾी। पेट्रोल 14 पैसा ऐं डीज़ल 1 रुपयो 98 पैसा फी लीटर सस्तो। पेट्रोल जो नओ 387 रुपया 40 पैसा ऐं डीज़ल जो नओ 400 रुपया 35 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 1 अक्टूबर लाइ हूंदा। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रमा चयो आहे त हुकूमत 1 महीने में 150 अरब रुपया लेवी वठी रही आहे। अवाम जो मुतालबो आहे त पेट्रोल ते लेवी जो ख़ात्मो कयो वञे। हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾिनो आहे पर उहो नाकाफ़ी आहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खे को बि रिलीफ न आहे मिलियो। हैदराबाद में धरणे खे ख़िताब कंदे हाफिज़ नईम रमा चयो त पाकिस्तान में सियासत खानदाननि ताईं महदूद थी रही आहे। 3 मार्च दौरान वज़ीरनि धरणो ऐं इतिजाज़ ख़तमु करण जो चयो। वज़ीरनि जे चवण ते रुगो कुझु ॾींहं जी मोहलत ॾिनी आहे। तरीक़नि साहब खे वक़्त ते वधीक ॻाल्हियुनि जे महज़ ते अचणु घुरिजे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी

0: देर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राबते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को आपके शहर मेहरापुर जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आइए। मैं बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साइज, अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म। लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी।
5: 03013992836।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हर इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमे आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाइस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 03-120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा
4: कान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो

0: पेट बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी पेट हलंदी
2: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस
0: जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: अकले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर, बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेट।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं

0: ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज A product by Biocon International Pakistan.
1: Ashik Honda Showroom Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Chopper Atmat Aimba Akhtiar 3S Dealer Ashik Honda Motors Mehrapur Jite Nayi Motorcycle Ji Sale Company Aje Mukarar Kel Rate De Dastiyab Ahe Service Center Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle Ji Behtreen Service Kai Vendi Ahe Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts Khususi Riyat Te Maujood Ashik Honda Motors Te Pahenje Honda Motorcycle Ji Tuning Karayo Computerized Japanese Stitching Machine Je Zariye जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरआई 0307359210
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी है मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: है या उसके अलावा केपीके में भी दहशतगर्दी जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है इन दिनों में, तो क्या सूबाई हुकूमत से भी एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से किसी राबते में है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया जाए, या इस लिहाज से कोई लाया अमल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है?
6: टू क्वेश्चंस आई थिंक यू हैव आस्क्ड, वन अबाउट अफगानिस्तान एंड वन अबाउट दिस. द सेकंड पार्ट, वी आर ए इंस्टीट्यूशन, द आर्मी इज ए institution which works under the federal government. It's for the federal government to work and they coordinate and correspond with the provincial governments. So that's the how it works. We work under the ambit of the constitution and the law. So that question should be directed towards the federal government. They are the competent authority on that.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज. मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे. इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में. एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें. दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम. हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें. मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 31 05 109 03000 31 05 109.
7: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि. जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो. हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो. सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था. असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल. ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो. ऑनलाइन अप्लाई लाइ फॉरवर्ड कॉलेज डॉट पीके, वधीक ॼाण लाइ 03042827274. ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं. एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर. अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो.
8: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि.
8: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी.
9: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000.
10: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर. होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है। सुपर वाइट।

ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो ज़ी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभु खां वॾी नेमत सिहत आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। सभ खां पहिरीं त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? तबियत सभु ठीकु आहे
1: जी? साईं अलाह ताला जा सां।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, असां प्रोग्राम जी पहिरीं कॉल जी तरफ़। अस्सलामु अलैकुम, केरु ईंदा किथां खां? जी अजा, छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
1: मथे में गोरियूं थियूं आहिनि, हेतिरी वॾी थी विया, पकड़े बि करे विया, नरम थी विया।
0: जी जी,
1: पोइ उन जो हल
0: डॉक्टर साहब खे असां अवां रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे, वरना अवां खे ॿुधाए थो डॉक्टर साहब, रेडियो ॿुधो। जी सर, जी सर,
2: रूबरू ईंदो त हुनखे ॾिसी करे पोइ सही नमूने सां दवा ॾेई सघिबी, वॾी महिरबानी।
0: बिल्कुलु सर, ज़ाहिर आहे सर, साम्हूं ईंदो त हुन तरीक़े सां तव्हां मुआइनो कंदा त ओड़े हिसाब सां तव्हां दवा ॾींदा। लाइव कॉल जो नंबर हिकु दफ़ो अवां ॿीहर अवांखे रिपीट कराईंदासीं, 0201 91 8051।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬੀ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਅਜਾਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
1: ਅਜਾਦ ਥੋੜਾ ਅਰਜ਼ ਆ।
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਯੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਓ, ਮਾਨੀ ਖਾਵਾਂ ਥੋ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਥੀ ਤੇ ਪੋ ਛਿਕੂ ਬਚਨ ਥਿਉ ਐ ਬਲਗਮ ਬਚੇ ਥੋ।
0: ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਕਿਤਰੀ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਜੀ?
1: ਉਮਰ ਮਜਾ ਬਾਲ 70 ਸਾਲ ਆ।
0: ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਂ ਕੇ ਬੁਧਾਇ ਥੋ ਰੇਡੀਓ ਬੁਧੋ। ਜੀ ਸਰ।
2: ਜੀ ਸਰ। चाचे की जी एक तो उम्र जो है सो माशाला सुठी है, उन चाचे सिर्फ यही बुधा तो मानी खाए तो एलर्जी थे या मानी खाने से या कोई का शेख सणबी वगैरह या खट्टी वगैरह शे खाने से तकलीफ थे थी तो रूबरू उन खोले को बुधा तो चाचे को यो ही चंदा तो रूबरू डेखारे वजन तो उनका पुछी कर उनकी दवा दींदी इनशाला तला बिल्कुल सही थी।
0: प्रोग्राम आए सहज गाल असडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम एक बी कॉल की तरफ हल्दी।

0: डॉक्टर साहब लगे तो कॉल ड्रॉप थी चुकी है।
1: दोस्तों के यूअर्स कंदासी तो थोड़ो बाहर निकली करे ना जिते एरिया हो जे खुलल हो जे नेटवर्क सही हो जे तो उता भी गले।
0: बिल्कुल सर, एक बी कॉल जी तरफ ना सी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अदा रेडियो सेट ऑफ कर जो,
0: रेडियो सेट अदा पहरिया बंद कर जो।
2: जी
0: जी जी। शाह पुशन जाने डॉक्टर साहब का
2: घर पे आया।
1: अदा कॉल ड्रॉप कर बाबा जी, एक कॉल ड्रॉप कर।
0: सर असा लिसनर्स के पेरिया भी चवंदा आयो त जडे भी कॉल कियो तवा त सब का पेरिया वीडियो बंद कर
1: टाइम खराब करण होदो है। पेरिया भी चल है त कॉल जडे तवा कयो त रेडियो सेट ऑफ करे पोई कंदा कियो।
0: बिल्कुल सर
1: जी सर।

0: ॾेखारे आयो क्लिनिक बंदि हुई। हा त सुभाणे सुभाणे क्लिनिक ते हूंदासीं, तव्हां रूबरू ते ॾेखारे वञो। ओके, अलाह
1: सर। इन करे बार बार असां एड्रेस ऐं टाइम तव्हांजो रिपीट कंदा आहियूं त
0: को उहो आहे त मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई त असांजे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि। ऐं मिसाल अंगारे जो ॾींहुं त साईं असां क्लिनिक ते बीठा आहियूं, अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे। बाक़ी टाइमिंग जे हवाले सां ॿियनि ॾींहंनि में टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां ठीकु आहे, कॾहिं लेट सवेल थी बि वेंदी आहे कलाक अधु, लेकिन जेको टाइम हूंदो आहे, जेको ॾींहुं रखियलु हूंदो आहे, उहो ॾींहुं असांजो कॾहिं बि मिस न थींदो आहे। नंबर तव्हां वटि मौजूदु आहिनि पेशंट खे, जेकॾहिं देरि बि थींदी आहे त को बि पेशंट असां सां टचिंग में हूंदो आहे, कॉन्टेक्ट में हूंदो आहे, उते बोर्ड ते नंबर लिखियलु आहे, त उहो पुछी करे पोइ जेको आहे सो उते इवेट करे वेंदा आहिनि ऐं उहे दवा वठी वेंदा आहिनि। इन जे करे अधे खे बि इहो ई चवंदासीं त तव्हां जेको आहे सो रूबरू ॾेखारे सघो था, ऐं टाइमिंग तव्हां ज़रूरु जेको आहे सो नोट कजो, ऐं ॾींहं अव्हां जे नोटेज में हुजनि।
1: प्रोग्राम सेहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचरी सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8051। ऐं डॉक्टर साहब जो इहो साॻियो ई कॉन्टेक्ट नंबर आहे, हिन ते तव्हां कंहिं बि वक़्तु कॉन्टेक्ट करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था।

0: जी दा केर किथा खा
1: सर फकीराबाद का दा गल हूं
0: जी जा छा पूछन ता डॉक्टर साहब का
1: सर पर माथे में तकलीफ हुई माथे में दवा वती है
0: जी जी
1: आने कमजोरी रह जी जसन में जरा
0: अच्छा किथा वरती दवा
1: सही वती है गंबट में जरा
0: अच्छा
1: आने तबीयत माने सही थी आने माने जंगन में सहाय भी रहे थी माने तो था उमर थक जी तो पा माने हां में सोर भी पाए दो
0: जी जी ठीक है डॉक्टर साहब वहां के बताए तो रेडियो बुदो जी सर
2: बिल्कुल लेकिन मादे जी कमजोरी थी वेंदी है उन खां पो ऐसा भी कमजोरी थी वेंदी है एक तो सौंफ हर खादे खां पो मां हर मरीज के बुधाइनो आ हर खादे खां पो सौंफ जी चपटी जको है सो वात में विझी छॾे मणो उहा काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदे वारी आहे उहा अवांजी ऐसा भी कमज़ोरी भी दूरि कंदी आहे त मादो भी सही कंदी आहे या उन खां अलावा अदपा बादाम अदपा सौंफ अदपा मिसरी पाण में सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइण सां काफ़ी हद तक फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे लेकिन अञा बि कमज़ोरी घणी आहे त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि उन्हनि जी दवा थींदी आहे होम्योपैथिक में जेकी हर लिहाज़ सां बहितरु हूंदी आहे दवा ॾींदासीं इनशा तरह ठीकु थींदो
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन ते कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि संदन जोड़नि गोॾनि जो सूरु कुंज रग जो सूरु नक कन गलो नज़लो निछो मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहणु कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघु टीबी मैदे जो सूरु मैदे जी अल्सर तिली जो वधणु जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि में जो इलाज कंदा आहिनि ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि।

0: असां ई हूंदो आहे ईअं कंदा आहियूं त जेका बेकुमलो हिकिड़ो खाधो खाईंदा आहियूं या चांहि ज़्यादा पीअंदा आहियूं पोइ जेको आहे सो मादे ते भोजन पिणु रहंदो आहे या सिगरेट बि पीअंदा आहियूं लेकिन ईअं बि थींदो आहे जो मानी खाई वरी हिकदमि पाणी पी छॾींदा आहियूं त उहो बि जेको आहे सो मादे जे लाइ हानिकार हूंदो आहे हिकु त मानी खाइण खां अॻे अधु कलाकु अॻे पाणी पीअणु घुरिजे ऐं मानी खाइण खां कलाकु ॾेढ खां बाद में पाणी पीअणु घुरिजे इहो हिकिड़ो रूटीन आहे ऐं मानी जेको आहे सो खाई यकदमि सुम्हणु न खपे घटि में घटि ॿ कलाक हुनजो वक़फ़ो हुजे त इहो हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो आहे हुन खां पोइ सणबी शइ चिकनाहट वारी शइ तरियल शइ खटी शइ या भोजन पिणु कंदी आहे उन खां थोरो परहेज़ कंदा कयो ऐं उनखां पोइ जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची पाणीअ में काढ़े उनजो काढ़ो जेको आहे सो ठाहे करे उन में तव्हां अदरक बि मिलाए सघो था उहो तव्हां सुबुह जो नेराने जेको आहे सो पीअंदो इनशा ताला उन सां काफ़ी इफ़ाक़ो अची वेंदो आहे जेके बि माथे ते ग़लीज़ जेके मादा अची वेंदा आहिनि उहे बि अख़राज थी वेंदा अवांजो कॉन्स्टिपेशन जेकॾहिं कब्ज़ आहे त उहा बि ख़तमु थी वेंदी अवांजो हाज़मो बि दुरुस्त थी वेंदो आहे ऐं जेकॾहिं ईअं न त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त सौंफ़ तव्हां हर खाधे खां पोइ ईअं बि चॿाड़े सघो था उहो बि अव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थो चांहि जो इस्तेमालु घटि कयो घटियूं शयूं ॿाहिरियूं शयूं इस्तेमालु घटि कयो इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो अञा बि फ़र्क़ु न पए त होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु करे सघो था असां वटां अलाह कंदो हुन में बि अव्हांखे शिफ़ा मिली वेंदी वॾी ॻाल्हि
1: जी सर प्रोग्राम जी लास्ट कॉल जी तरफ़ हलंदासीं अस्सलाम वालेकुम जी अदा केरु आहीं किथां खां छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां जी अदा इलाज बिल्कुलु मौजूदु आहे रूबरू ॾेखारियो डॉक्टर साहिब खे डॉक्टर साहिब ॿुधाए थो वधीक जी सर
0: हा जी साईं बिल्कुलु न देखे ॿुधाईंदासीं हुनजो इलाजु ट्रीटमेंट मौजूदु आहे अलाह ताला जी महिरबानी सां सभई पेशंट असांजे इन होम्योपैथिक इलाज सां इन मादे जे बीमारियुनि में या पिते में जेके पथरियूं हूंदियूं आहिनि या जिगर ते जेकी सोज़िश चर्बी थी वेंदी आहे या गुर्दे में जेको किचरो अची वेंदो आहे उन सां अलहमदिल्ला उन्हनि खे शिफ़ा मिली चुकी आहे अदे खे बि इहो ई मशवरो ॾींदुसि त मेहरापुर हालाणी वेझी आहे मेहरापुर हिकु दफ़ो अची साम्हूं वज्रपोटा पेट्रोल पंप तव्हां जेकी एड्रेस ॿुधाईंदा आहियो उहा हुते अची रूबरू ॾेखारींदा इनशा ताला दवा जे हिसाब सां जॾहिं दवा मिलंदी मरीज़ खाईंदो त इनशा ताला काफ़ी अफ़ाक़ो अची वेंदो वॾी महिरबानी
1: डॉक्टर साहिब वक़्त जो एहसास वक़्तु पूरो थी चुको आहे असांजे प्रोग्राम जो आख़िर में मां कहिड़ो पैगाम ॾियणु
0: चाहींदा जी बिल्कुलु वक़्तु चवे आऊं बादशाह ऐं वक़्तु कंहिंजो इंतज़ारु न कंदो आहे ऐं वक़्त जो टाइम तव्हां अंदाज़ो पाण लॻाए सघो था मैसेज इहो आहे त हर वक़्तु ख़ुशि रहंदा करियो ऐं छो जो ख़ुशी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदी आहे ऐं रूह खे ख़ुशी तॾहिं तस्कीन पहुचाईंदी आहे जॾहिं रूह पाक हूंदो आहे रूह पाक तॾहिं थींदो आहे जॾहिं अवां हर वक़्तु वज़ू में हूंदो ऐं नमाज़ पढ़ंदा हुजो वॾी महिरबानी
1: ऐं असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु बि अॼु पंहिंजी पुॼाणी त पहुतो दुआ आहे त अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं सदा ख़ुशि रखे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे अलाह हाफ़िज़।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: Chinarport may report the dead body. His dead body was recovered by Chinarport as per them on 30th September. So I would request my dear friend Havaldar Asif to tell something about himself that he's.
5: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है. मैं basically district attack तहसील पिनी देव रहने वाला हूँ. कल पिछले टाइम कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको इंडियन आर्मी ने कश्मीर में शहीद कर दिया. आप किधर हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आपके सामने हूँ, मैं जिंदा वाशिंग मिला. इसके बाद मुझे इंडियन नंबर से कॉल आने शुरू हुई. उन्होंने मेरे से ज्यादा डाटा पूछना शुरू किया कि आप किधर हैं, कौन हैं, उसे क्या लगते हैं. मैं वो नंबर बुला करता हूँ. फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे आई नहीं से पता चला कि इंडियन जो मीडिया है उन्होंने आपका जो डाटा है उसको इस्तेमाल करके आपको ऊंची कार्रवाई में कश्मीर में शहीद कर दिया है. मुझे तो खुद बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है. मैं अभी घर में बैठा हूँ, कितने उन्होंने मुझे शहीद कर दिया. ये बहुत ही घनौना और झूठा और घटिया इल्जाम जो इंडियन मीडिया ने पकड़ा. मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ.
6: भारतीय फौज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक भेरो बीहर बेनकाब. पाक फौज अगोणे SSG कमांडो के मारण जी दावा कूड़ी निकती. आसिफ उर्फ मोहम्मद मूसा मीडिया डो पेश. आसिफ उर्फ मूसा चाहिए त भारतीय फौज जी दावा बाद मुखे फोन अचण शुरू थे. भारतीय फौज पारा मुकाबले में मरण वारी दावा ते हैरत थी. मां जिंदा आया ए सबनी जे सामू आया. 2000 में फौज में भर्ती थियो. 17 साल बाद SSG मां रिटायर्ड थियस. हाँ फैमिली सा गड रहो आया.

भारत के को ड्रामो करणो आहे त करे ॾेखारे। असांजो रतेमल वधीक सख़्तु हूंदो। DGISPR चयो आहे त किरियल दुश्मन सां टकराउ असांजी बदकिस्मती आहे। जेकॾहिं हू कुझु करणु चाहिनि था त कनि। असां सदाई तयारु हूंदा आहियूं। अॼु जो हिंदुस्तान इनकाउंटरिस्तान बणिजी वियो आहे। वालारल कश्मीर जी सूरतहाल सभिनी जे साम्हूं आहे। कुलभूषण खे किरण ते एज़ाज़ ॾिनो वियो। कुलभूषण ज़िंदा हुजे या मुर्दा, भारत जे मुंहं ते दाग़ आहे।

जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्ने क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते GFM
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream brought by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: You can see the Superman, please find him. कारण हमें बताएं आपके क्या क्या करते हैं तो अधी मूसा ये है जी हवलदार आसिफ मोहम्मद आसिफ ऑफ SSG who has been चुनाव वाली वोट की तरह चाहिए जो सेकंड वाली सेकंड सेकंड नो दिस इज द मिनट मोहम्मद आसिफ एलियस आसिफ मूसा चुनाव कोर्ट ने इनको दी इसकी डेड बॉडी हिज डेड बॉडी वाज रिकवर्ड बाय चुनाव कोर्ट एज पर देम ऑन 30 सितंबर तो आई वुड रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड हवलदार आसिफ टू टेल समथिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट इज
3: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कटक तहसील पुनी देव तरंग वाला कल किसी टाइम कुछ दोस्त ने मुझे कॉल की कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको इंडियन आर्मी ने कश्मीर में शहीद कर दिया आप किधर हैं मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ मैं आपके सामने हूँ मैं जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मुझे इंडियन नंबर से कॉल आने शुरू हुई उन्होंने मेरे से ज्यादा डाटा पूछना शुरू किया कि आप किधर हैं कौन हैं उसको क्या लगते हैं मैं वो नंबर बुला करता हूँ फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे आई नहीं से पता चला कि इंडियन जो मीडिया है उन्होंने आपका जो डाटा है उसको इस्तेमाल करके आपको ऊंची तबाही में कश्मीर में शहीद कर दिया है मुझे तो खुद बहुत हैरानी होगी ये क्या हो रहा है मैं अभी घर में बैठा हूँ कितने उन्होंने मुझे शहीद कर दिया ये बहुत ही घनौना और झूठा और घटिया इल्जाम जो इंडियन मीडिया ने लगाया मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ
4: भारतीय फौज जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक भेरो बीहर बेनका पाक फौज जे अगोड़े SSG कमांडो के मरण वाली दावा कूड़ी निकती आसिफ उर्फ मोहम्मद मूसा मीडिया आरोप पेश आसिफ उर्फ मूसा चाहिए है था भारतीय फौज की दावा बाद मुख्य फोन अचान शुरू थिया भारतीय फौज पारा मुकाबले में मरण वाली दावा ते हैरत थी मां जिंदा है ए सबनी जे सामू आया बाजार में फौज में भर्ती थियोस 18 साल बाद SSG मां रिटायर थियोस हाने फैमिली सा गड रहंदो आया
5: I think I tried to explain to my brother over here that as far as India is concerned, we are prepared for everything that they are ready to do because they are an unreliable, a country which believes in deceit and a country which believes in terrorism and which believes in their own hegemony in the region. So the only guarantee of peace against such a country is our own strength. And we, alhamdulillah, the people of Pakistan, its political leadership and its soldiers, its armed forces have complete confidence in our strength and our cause. So that is the biggest guarantor of peace in this region. We are the biggest guarantor of peace in this region.
4: भारत के को ड्रामो करणो आहे त करे ॾेखारे असां जो रद्देमल वधीक सख्त हूंदो DGISPR चयो आहे त किरियल दुश्मन सां टकराउ असांजी बदकिस्मती आहे जेकॾहिं हू कुझु करणु चाहिनि था त कन असां सदाई तयार हूंदा आहियूं अॼु जो हिंदुस्तान इनकाउंटरिस्तान बणिजी चुको आहे वालायल कश्मीर जी सूरतहाल सभिनी जे साम्हूं आहे कुलभूषण खे जहाज़ किरण ते एज़ाज़ ॾिनो वियो कुलभूषण ज़िंदा हुजे या मुर्दा भारत जे मुंहं ते दाग़ आहे फौज आइन जी मातहत ऐं वफ़ाक़ी सरकार जे हुकमनि ते अमल कंदी आहे अफ़गानिस्तान सां ॻाल्हियुनि जो सवाल बि हुकूमत खां थियणु घुर्जे पाकिस्तान जी सलामती ऐं सरहदी हदनि ते को बि ठाह न थींदो मुल्की सलामती लाइ जंहिं हद ताईं वञणो पियो वेंदासीं पाक फ़ौज जे तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान वक़ार दिफ़ाई मुआहिदे ते अमल लाइ पुरज़म आहे हरमैन शरीफ़नि जो दिफ़ा ऐं सऊदी सलामती यकीनी बणण लाइ तयार आहियूं मक्का अलायंस ते मीडिया में ॻाल्हाए नथो सघां
6: उनके साथ फिर एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है कुछ दिन पहले खबरें हुई कि बागी पीटीआई इमरान

0: आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ी बहुत बड़ा कलंक का टीका है, वो जिंदा हो या मुर्दा वो हिंदुस्तान के मुंह पे लगा हुआ। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जमहूरियत है, रियासत है तो आप और मैं।
1: पाक फौज और सियासत से कोई भी ताल्लुक ना है, सियासत करण सियासी जमातन जो कम है। फौज कें भी सियासी मामले जो जवाब न दीदी, पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सईफ चौधरी है पेरे भी वाजे कर चुका हूं, सियासत सियासी जमातन जो कम है। गालियों भी सियासी जमातन हुकूमतन विच में थन्दून, मुल्की सलामती से को भी ठा नी, रियासत होंगी तो सियासत भी होंगी, रियासत होंगी तो जमहूरियत भी होंगी, रियासत होंगी तो तवा असा भी हूँ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03003105109।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण ना पहिरियों कदम वधायो।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
6: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

अजब अवां जो आ मिलण कदें था कुछ चयो वन्यो अजब आ कुछ अवां जो अजब अवां जो आ मिलण कदें था कुछ चयो वन्यो कदें गुलाब दई कदें पत्थर था को हयो वन्यो।

ही ख्वाब ख्वाब जो बदन रुली उघाड़ो थियो वञे ही ख्वाब ख्वाब जो बदन रुली उघाड़ो थियो वञे जडहें टिड़े थी महक का गजब डिहाड़ो थियो वञे वञे थो शाम जो पहर उदास सार का डई थकल सितारा रात जा वञे थो शाम जो पहर उदास सार का डई थकल सितारा रात जा वञन था गाल का चई ये घड़िन जी आरसी वञे थी चूर चूर थी ये मधुर ही चांदनी छणे थी बूर बूर थी कदें अचो था इश्क थी कदें वञो था ख्वाब थी कदें अचो था इश्क थी कदें वञो था ख्वाब थी कदें मिलो था खार थी कदें ॾिसो था आब थी सो समझ में नथो अचे त ख़ाल खे संभालजे या हाल खे संभालजे वञे पियो दर्द थियो सॼो वञे पियो दर्द थियो सॼो कीअं साल खे संभालजे समझ में नथो अचे गुलाब रुत गुलाब पल कजे कजे कजे त छा ॿुधायो कुझु अवी भला त माठ खे संभालजे या तात खे संभालजे।

प्रोग्राम दिल जी गल सा गड आऊं आया अब चौहान आया वहां बुधी रहया जी एफएम नेटवर्क दोस्तों प्रोग्राम जो शेड्यूल में कुछ तब्दीली आई है आगाह कंदो हला दोस्तन के लाइव कॉलिंग नंबर पण बुधाइंदो हला छाकाण त हींअर जेको आहे त ब्रेक खां पोइ जेको आहे त असां लाइव कॉलिंग अटेंड कंदासीं अवां जूं लाइव कॉलिंग शामिल कंदासीं ऐं प्रोग्राम में थोरी टाइमिंग जो शेड्यूल जेका तब्दीली आहे आई आहे उहा बि सरेणनि ताईं जेको आहे त पहुचाईंदो हला प्रोग्राम जो टाइम साॻियो रहंदो 9 to 11 यानी कि 9:15 लॻभॻि स्टार्ट थिए थो असां शेड्यूल वजिबि 9 to 11 छाकाणि त असीं मौजूदु अवां जे लाइ स्टूडियो में अवेलेबल हूंदा आहियूं 9 to 11 पहिरियां हुयो प्रोग्राम सूमर खां छंछर ताईं हींअर प्रोग्राम जो शेड्यूल कुझु हिन रीति आहे त सूमर खां ख़मीस ताईं मुंहिंजो ऐं अव्हां जो साथ रहंदो

कुझु ज़माने जा कमकार ऐं कुझु मसरूफ़ियतूं सो इन शेड्यूल असांखे ऐं कुझु पॉलिसी ॿिन्हीअ खे कंपेयर कंदे इहो डिसाइड थियो आहे त सूमर खां ख़मीस ताईं दोस्तनि सां गॾु दिलि जी ॻाल्हि में हूंदासीं ऐं खोड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348।

0: हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि फिरंदासीं। अवां जूं फोन कॉल्स बि अटेंड कंदासीं, अवां सां खोड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं। त पोइ ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क। वापसि फिरंदासीं हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शल ब्रेक खां पोइ।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

अच्छों में शुमार रखते हैं, बड़े बाअदब हैं अच्छों में शुमार रखते हैं, लबों पे फूल दिलों में खार रखते हैं। बड़े बाअदब हैं अच्छों में शुमार रखते हैं, लबों पे फूल दिलों में खार रखते हैं, बड़े खुश सुखन वो खुश लिबास हैं लेकिन, बड़े खुश सुखन वो खुश लिबास हैं लेकिन, ये अपने बातिन में कितने गुबार रखते हैं। लबों पे जिक्र इखलास हो वफा लेकिन, लबों पे जिक्र इखलास हो वफा लेकिन, पसे नकाब नियत में इंतशार रखते हैं। लबों पे जिक्र इखलास हो वफा लेकिन, पसे नकाब नियत में इंतशार रखते हैं, कभी जो वक्त पड़े बदलते हैं चेहरे, कभी जो वक्त पड़े बदलते हैं चेहरे, करते हैं वार हाथों में प्यार रखते हैं। ये शहर मुनाफ़क़त भी खूब है जहां, ये शहर मुनाफ़क़त भी खूब है जहां, जो जितना मुखलिस हो उतने ही अग्यार रखते हैं, बड़े बाअदब हैं अच्छों में शुमार रखते हैं, लबों पे फूल दिलों में खार रखते हैं।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल सा गदा हुआ है अब चौहान आया मैं बुधी रहा हूं जीए एफएम नेटवर्क दोस्तों खोड़ सारी शायरी शामिल थी वही प्रोग्राम में अजा भी थींदी हियर मोजी जुबानी न पर अवां जी जुबानी थींदी मतलब वक्त अची वो है अवां सा गाल बोल करण जो अवां सा दिल जो गाल करण जो जे तवां के असा थोरो घणो थी सके तो तकलीफ़ रसाई हुजे टाइमिंग में तब्दीली बुधाए करे या प्रोग्राम जे शेड्यूल में ऐं उते हींअर थोरी नंढड़ी गुड ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे हींअर ईअं न लॻंदो त 45 ते ब्रेक थींदो हाणे ब्रेक पाण 10 वॻे थींदो हिन विच में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं अवां सां फ़ोन कॉल्स ते कचहरी थींदी त असां सां गॾु लाइन ते ॾिसूं था केरु कॉलर आहिनि कॉल बिल्कुलु अव्हांजो अहसासु आहे मुसलसल हलंदी पई रहे पर असां शामिल कंदासीं हींअर पहिरीं कॉल केरु असां सां कॉल ते आहे अचो त कॉल अटेंड कयूं अस्सलाम वालेकुम केरु साईं किथां खां अस्सलाम वालेकुम केरु साईं किथां खां ए वन अल्लाह जा एहसान अव्हांजो आवाज़ कुझु कटिजे पियो पहिरां जी केरु पिया ॻाल्हायो पहिरां सिद्दीक साईं कहिड़ा हालनि ख़ुशि आहियो अव्हांजे हवा वधीक हली रही आहे या अव्हां कंहिं शोर शराबे में आहियो पखे खे थोरो साइड कयो या थोरी देरि गर्मी बर्दाश्त कयो जी कयां जी कयां भाउ खे
1: जेको
0: जंहिंजे
1: अंदर में आहे मालिक अब आहे लेकिन खुदा जो चाहे महबूब मुस्तफा जो दरबान थी पए
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: जे मन पसंद माण्हू मेहमान थी पए दिलि जो त पूरो अरमान थी पए
0: बिल्कुलु थींदा इनशाह अरमान अव्हां जे दिलि जा पूरा थींदा अॼु प्रोग्राम में शामिल थिया वॾे वक़्त खां पोइ अव्हां जी कॉल्स असांखे काफ़ी वक़्तु आईंदियूं हुयूं पुराणे वक़्त खां जॾहिं कंहिं ॿिए
1: प्लेटफॉर्म
0: फीडबैक मिलंदो रहंदो आहे अव्हांजो फीडबैक मिलंदो रहंदो आहे अव्हांजो कॾहिं कॾहिं को असां टेक्स्ट मैसेज पिणु जेको आहे त शामिल कंदा आहियूं प्रोग्राम में अव्हांजी चूंड पोएट्री में शामिल कंदा
1: आहियूं
0: जी जी लखथोरा लखथोरा जी इब्तिदा थी चुकी आहे अवां सां ॻाल्हि ॿोल जी कचहरी जी असां नेक्स्ट कॉलर न वधंदासीं अस्सलाम वालेकुम केरु साईं किथां खां तव्हांजो बिल्कुलु तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु घटि पियो अचे पहिरां
2: हलो हाणे अचे थो
0: बसि न अचणु जहिड़ो पर अचे थो जी कयां जी
2: भाउ
0: वारा छा कंदा
2: आहिनि
0: 10 ताईं हलाईंदा आहिनि मोरे वारा वॾा बेमुरो वतन अवां किथां मोरे खां ई ॻाल्हायो पिया? हैलो अदा भाईजान, माज़रत ख़ाहियूं, अवां जी कॉल पाण ई ड्रॉप थी वई, पर अवां जो आवाज़ बि बिल्कुलु

0: जी दोस्तों, हमारा जो
1: फरमाइशों में शामिल कंदा रहंदासीं, प्रोग्राम में आए हमारा जो फोन कॉल्स भी अटेंड करण जी कोशिश कंदासीं। असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
2: वालेकुम सलाम साईं, मोहम्मद ताहिर गुंड कोट वरी दा पुंड लग पुछा के का।
0: मोहम्मद ताहिर साईं तमाम तकड़ है, अवां तमाम जल्दी तकड़ा तकड़ा सलाम पे दियो। केड़ा खुश आयो
2: साईं? अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे घर में इंसान मां बिल्कुल ठीक। तमाम साईं खुश आयो? ठीक है तव्हां जी?
0: अल्लाह जा एहसान। अवां जी टोन त बिल्कुल आरजे वारी आ, अवां त एफएम ते होण घुरजो।
2: जी जी बिल्कुल, अल्लाह खैर करे।
0: जी के पियो लॻे प्रोग्राम?
2: प्रोग्राम माशाल्लाह लॻो पियो आहे।
0: पक सां?
2: पक सां।
0: त पोइ ॿुधायो का पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि भला असां खे ऐं सॼी संगत खे।
2: मां यादि करे न आयो आहे, बाक़ी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूरु यादि करे ईंदुमि। छो जो मां तकड़ में कान लॻाईंदो त पोइ मूंखे ज़हन में न रही त मां छा चवणो आहे।
0: न ॿुधो, ॻाल्हि ॿुधो, दिलि जी ॻाल्हि जेका आहे न उहा यादि न कबी आहे। दिलि जी ॻाल्हि हमेशह दिलि में हूंदी आहे। असांजो को हिकिड़ो अहिड़ो टॉपिक न आहे जंहिं ते अव्हां खे पाबंद बणाइजे त ही ॻाल्हि कयो। का बि पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि अदब एतराम ऐं इख़लाक या मैसेज पैगाम जे थ्रू ऐं या शायरी वसीले अव्हां दोस्तनि सां कचहरी करे सघो था। अव्हां खे अध खां मथे मुनी सिंध ॿुधी रही आहे। सो
2: सभिनी दोस्तनि खे घुरिजे जेके असांजा सिंधी भाइर आहिनि, हिन वक़्तु ख़ासि करे असांजे पूरे सिंध में अॼुकल्ह तमामु घणो हिकु मामिलो हली रहियो आहे, उहो आहे भेड़नि जो। मां उन्हनि खे मां वधीक अर्ज़ु रखंदुसि त जेको आहे भेड़नि खां परे रहनि ऐं पंहिंजे अलाह खे जेको आहे यादि कनि ऐं निमाज़ पढ़नि पंहिंजे वक़्तु राजमाइत सां ऐं उन सां गॾु उहे जेको आहे सो पंहिंजे पाड़ेसरनि जो पड़ोसियुनि जो जेको आहे घणे खां घणा कनि। उहे वॾे वक़्त जी राय
0: लाजवाब साईं, लाजवाब। ज़बरदस्त मैसेज को दोस्तनि जा नाव शामिल करणु चाहींदो?
2: जी जी बिल्कुल, असांजो दोस्त आहे प्यारो मोहम्मद सिद्दीक मुंड मुंहिंजो भाउ आहे।
0: जी जी साईं,
2: जिंदा दिशा बुखारी साहिबु आहे।
0: हा
2: ऐं साईं ख़ासि करे तव्हांखे सलाम, तव्हांजी पूरी टीम खे, जेके पीरी पहिरां दिल वारा सभिनि खे अस्सलाम अलैकुम, यादि मदद।
0: वा सलाम सखी पीर मौला अली, कुर्ब लव यू, लख लाइक पहिरां। थैंक,
2: अल्लाह हाफ़िज़।
0: अल्लाह हाफ़िज़। साईं बिल्कुल जेको आहे त सो बि फास्ट कंहिं मॉर्निंग जे प्रोग्राम या मॉर्निंग खां बि को मंझंदि जे कंहिं प्रोग्राम जो बिल्कुलु आरजे लॻो पियो ऐं तमामु ज़बरदस्त अंदाज़ सां, पुरजोश मिज़ाज सां, पुरखुलूस अंदाज़ सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई ऐं ज़बरदस्त इंट्रेस्टिंग माण्हू हो। कॉल शामिल कंदासीं बि। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
3: वालेकुम अस्सलाम साईं, लाड़काणे खां ज़ैब थो ॻाल्हायां।
0: लाड़काणे खां
3: ज़ैब?
0: ज़ैब साईं वेलकम, भलीकार, ख़ुशामदीद। लाड़काणे वारा त दाह कंदा आहिनि त हिन महिल असां वटि जेको आहे त नशरियात कोन हलंदी आहे।

0: रखंदसि, ॿियो सही करे हला, तव्हांखे ख़ुशि रखंदसि। ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे,
1: वॾी महिरबानी।
0: असांजा दोस्त ॿुधनि था कुझु,
1: दोस्तनि जा नाम शामिल कयो,
0: ज़ैनल आबदीन, आसिफ़ चाचड़
1: जी,
0: बिलावल, फरहान अहमद नवाज़,
1: हा,
0: ऐं आउं आहियां ज़ैब कटबर।
1: हा,
0: ठीकु आहे, महिरबानी,
1: शुक्रिया, लव यू, लख लाइक, थैंक यू।

0: यकीन कियो बेहद ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं अव्हांजो रिस्पॉन्स इहो प्यारु मोहबत मिलंदो आहे असांखे प्रोग्राम में। अव्हां बेसब्री सां इंतज़ारु कंदव। शामिल कंदासीं हिकिड़ी ॿी कॉल। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां? वाज़लाम रशीद साहब
1: जी, बहावलनगर पंजाब।
0: बहावलनगर पंजाब से बिल्कुल वेलकम, बलिकार खुशामदीद जी आयन वशात के और पखैर
1: जी, जी मैं भी आपको जी आयन पखैर अगले
0: खुशामदीद
1: और
0: भली करे आया
1: भली करे
0: क्या वजह? कल आपने हमारा प्रोग्राम सुना, उसमें जो है कि आपका तस्वीर को डेडिकेट किया मंगी साहब ने आचर घेटी से सखर से।
1: जी जी जी जी बिल्कुल मैंने सुना है।
0: क्या बात है।
1: और क्या सर, हो रहा सर ऐसे थे जैसे चांद के गिन सितारे होते हैं।
0: सर मैं आप सब लोगों का परस्तार हूँ मैं
1: इसीलिए ना हम आपसे रोशनी हासिल करते हैं ना, इसलिए आप परस्तार के छोटे छोटे सितारे में रहते हैं जो जमा हुए हुए हैं, तो चांद की खूबसूरत लगता है तारों की वजह से और सारे खूबसूरत
0: जबरदस्त। आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं खुद को सेलिब्रिटी या आप लोगों को सिर्फ जो है कि महज परस्तार नहीं समझता। मैं कहता हूँ अगर आप लोग मेरे परस्तार हैं तो मैं आप सब लोगों का परस्तार हूँ।
1: जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, नजरे पास।
0: क्या सुना रहे हैं आज?
1: तो आज मैं
0: कहें तो क्या बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन कोई नया वाला सुनाए, मतलब जो पहले नहीं सुनाया हो।
1: जी आपके प्रोग्राम में शायद
0: सुनाया। चलो सुना दें।
1: चल गुजारी ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥਾ।

0: वाह
1: किथा गुजारी
0: वाह वाह सर वाह, क्या बात है, क्या कहने, लाजवाब लाजवाब सर,
1: आपकी मोहब्बत है ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद मकरूज हूँ आपकी मोहब्बतों का
1: जी। मैं इसलिए तो शुक्रिया कर रहा हूँ ना कि रात आपने खान गुजारे जो मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी यार।
0: हाँ ये थोड़ी सी लंबी दास्तान हो जाएगी। ना छेड़ सुने, ना छेड़ किस्सा गम, बड़ी लंबी कहानी है।
1: क्या बात है, कहते हैं ना कि रात लंबी भी है और तारीख भी।
0: हाँ
1: शब गुजारी का सामान तो दोस्तों वो।
0: हाँ जी,
1: जाने कब फिर मुकद्दर में मिलना हो अपनी अपनी कहानी सुनो दोस्तों।
0: वाह वाह वाह,
1: तो आगे कहता है शायद कि मुझको मालूम है तुम भी मेरी तरह दिल जान कोई उल्फत में हार आए हो।
0: हाँ
1: अब नए सर से बाजी मुमकिन नहीं, अपना अंजाम खुद सोच।

0: लोग दोस्त।
1: क्या बात, लाजवाब सर, लाजवाब
0: जी।
1: थैंक यू जी।
0: मेरे प्यारे भाई हैं फरहाद
1: जी, जी जी
0: सुन रहे हैं आपको।
1: अच्छा, बड़ी मेहरबानी उनकी, शुक्रिया
0: भाई है। इकबाल पलपोट वाले जी बिल्ला,
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: गुलाबी संगत वाले
1: जी जी
0: जी, आशा चली है, ये तमाम भाई आपको सुन रहे हैं यार।
1: बड़ी मोहब्बत
0: तमाम जो है ना वो मुझसे रबते के लिए भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत है तमाम सब दोस्तों की।
0: जिस भाई ने रात को मेरा नाम सॉन्ग किया था उसको भी मैं बड़े प्यार से अदब सलाम के साथ मोहब्बत के साथ सलाम अर्ज करता हूँ, फौजी अंदाज में बल्कि सलूट पेश करता हूँ।
1: बड़ी मेहरबानी नवाजी
0: जी, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम, और आपके लिए खुशरू दुआ के अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान
1: जिंदाबाद,
0: हमेशा जिंदाबाद।
1: थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। जी दोस्तों, ब्रेक थे वन रखा अग्नि मास्टर चंद्र जी, खूबसूरत पोएट्री है आवाज़ में, गीत इंजॉय कंदासीं ऐं वरी पोइ ब्रेक थे वेंदासीं। ब्रेक खां पोइ वापसि वरी अव्हांजो फ़ोन कॉल्स अटेंड कंदासीं। अचो त गॾिजी मास्टर चंद्र जी खूबसूरत आवाज़ में ही गीत इंजॉय कयूं।

यू कैन सी द सुपरमैन प्लीज फाइन मेरा बच्चा कारनामे बताएं आपके क्या क्या करते रहे तो दी मूसा ये है जी हवलदार आसिफ मोहम्मद आसिफ ऑफ एस एस जी हु हैज बिन चुनाव वाली कोर्ट में जरा जाइए जो सेकंड वाली सेकंड नो दिस इज द मिनट मोहम्मद आसिफ एलियस आसिफ मूसा चुनाव कोर्ट ने इनको दी इसकी डेड बॉडी his dead body was recovered by Chinar court as per them on 30th September. So I would request my dear friend Havaldar Asif

0: to tell something about himself that reason.
1: Mera naam Aman.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो GAFM 94.